0: कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री। 40 लाख करोड़ से भी अधिक के

0: અંજલી બોલ, ગીત તો આયુષ્ય પૂરું અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરું હા આપણે આજ ની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીતે કે પહેલા આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ કે બરસાતને પહેલે ખેતીનું રખરખાવ હરતે કર તો આના વિશેની જાણકારી આલવા પહેલે આજે આપણે સ્ટુડિયો પટેલ સર આવ્યા હે એ બતાડેગા કે ખેતરની રખરખાવ હરતે કરવું હે તો પહેલે હમરી લાણાની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે
1: હવે નમસ્કાર
2: નમસ્કાર
1: આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: ધન્યવાદ
1: जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बारिश से पहले अपने खेत की तैयारी कैसे करें।
2: बिल्कुल, बारिश के पहले खेत की तैयारी करना किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान को यदि खरीफ सीजन में मतलब बारिश वाली सीजन के अंदर अच्छी फसल लेनी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसके लिए अपने मिट्टी है, जमीन है, खेत है, उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: तो उसको क्या करना चाहिए कि भी बारिश के पहले खेत को अच्छी तरह से खेड़ाई करनी चाहिए, हल चला देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और क्योंकि रबी फसल वो ले लेता है, उस समय थोड़ी बहुत नमी भी रहती है, तो उस समय आसानी से खेत हक जाता है। थोड़ा बहुत एक आध महीना पड़ी रहेगी फिर जमीन टाइट हो जाती है, फिर हकाई भी नहीं होती है बराबर, तो उस समय थोड़ी नमी के अंदर किसान को उस खेत को जुताई कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है कि उसकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाए, मतलब अंदर जो छोटे मोटे जो कीटाणु है, रोगग्रस्त बहुत सारे कीट रहते हैं, वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाए और काफी अच्छी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा क्या है किसान को जो बारिश के पहले ध्यान में रखने वाली बात के भी अपना खेत कैसे कहाँ ढलान है, तो थोड़ा बहुत समतलीकरण है, यदि कहीं हेड़े या कहीं पानी ज्यादा बह रहा है तो उसको पत्थर की मेड़ डालना है, कहीं पाली डालना है, तो उसको जल निकासी ज्यादा होती है वहां पर उसको बंद बांधना खेत के अंदर बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से अपनी मिट्टी खेत की बाहर नहीं निकल जाए। और भी जहां जहां समतल है तो चारों तरफ उसको मेड़ डाल देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह अपना खेत की पूर्व तैयारी किसान को कर लेनी चाहिए, क्योंकि खेत का पानी खेत के अंदर जितना भी रहेगा इतना किसान के लिए ज्यादा बेनिफिट है, और जहां पर जिसी एक कोने में ज्यादा पानी जा रहा है तो वहां पत्थर का बंद करके निकासी देना बहुत जरूरी है। यदि 12 महीने तक यदि खेत में कहीं टूट फूट हुई है तो उसकी रिपेयरिंग करना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सर,
2: तो ये उसका खेत की तैयारी। उसके साथ साथ जैसे बारिश आने वाली है तो अपने बारिश के पहले यदि किसान खेत की तैयारी तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ बीज भी उसको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को कौन से खेत के अंदर कौन सी खेती करनी है, मतलब किस खेत में कौन सा बीज बोना है, वो बीज मेरे घर में उपलब्ध है कि नहीं है, है तो किस प्रकार का बीज पड़ा हुआ है, कहीं कीड़े तो नहीं खा गया है, कहीं खराब तो नहीं हो गया है, उगने लायक या उत्पादन लायक बीज है के नहीं, वो सभी चीज किसान को देखनी चाहिए बारिश के पहले।
1: बिल्कुल,
2: बीज उपचार करना चाहिए, बीज वही देखने के बाद उसको सही साफ सफाई करके उसको रख दे, क्योंकि बुआई का समय हो उस समय वो बीजोपचार करके लगा दे।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी चीज जैसे बारिश आने वाली है उसके पहले अपन बात करें तो भी जैसे साफ सफाई की बात करें,
1: जी जी,
2: खेत के चारों तरफ जो अपनी फेंसिंग है, बागड़ है, खरपतवार नियंत्रण जैसे अपन बोलते हैं कि भी को किसी भी प्रकार का अंदर झाड़ी है या फिर जो दूसरी चीज उग गई है उसको अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए अपने खेत की। तो क्या है कि ज्यादा खरपतवार ने झाड़ी रही चारों तरफ, जो अपन बोलते हैं कि सेड़ा पूरा साफ हो जाए तो अंदर दूसरी बीमारी नहीं आवे, तो सफाई रखना बहुत जरूरी है। और जैसे अपन खेत के अंदर तो रेगुलर उत्पादन लेते हैं,
1: जी बिल्कुल,
2: उत्पादन लेते हैं तो उसको भी खुराक की जरूरत रहती है, मिट्टी को भी भोजन की जरूरत रहती है, तो बारिश के पहले पर्याप्त मात्रा में जो फसल लेते हैं तो देसी खाद उसके अंदर डालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: एक एकड़ में 6 से 8 टन कम से कम 10 टन आसपास वो देसी खाद यदि डाल के खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन उसको मिल सकता है।
1: बिल्कुल सर,
2: तो ये सब चीजें अपन बारिश के पहले मतलब देखनी चाहिए किसान को, जिसकी वजह से क्या है कि अगली फसल होने वाली जो फसल है उसके अंदर वो अच्छी तरह से उत्पादन ले सकता है और किसी भी प्रकार का उसके अंदर रोग या वो नहीं आ सकता।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि बारिश से पहले किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें खेत की तैयारी कर लेनी है, जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहनों को गहरी जुताई कर लेनी है ताकि मिट्टी में हवा का संचार अच्छे से हो और जो भी कीट हैं, जो मित्र कीट हैं वो बचे रहें और जो शत्रु कीट हैं वो उससे मर जाते हैं। इसी के साथ पानी जो है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में जमा हो पाता है। और आपके माध्यम से हम ये भी जान पाए कि किस तरीके से बारिश आने से पहले हमें हमारे खेतों के चारों ओर मेड़ लगा देनी है, ताकि हमारी मिट्टी बहकर न चली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में अगर हम इन सारी चीजों को पहले नहीं करते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी मिट्टी बहकर चली जाती है, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो भी बिगड़ जाता है। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, यहीं अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अगली फसल के लिए कौन कौन सी तैयारी जो है वो विशेष तौर पर पहले से ही करके रख ले।
2: बिल्कुल, अगली फसल के लिए यदि जो किसान भाइयों को तैयारी करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने खेतों की प्लानिंग,
1: बिल्कुल
2: उसको पहले से ही करनी होगी बारिश के पहले, कि भी मुझे इस खेत के अंदर तिल्ली बोनी है या अरहर और मक्का बोनी है,
1: बिल्कुल,
2: या तो इस खेत के अंदर मेरा नमी है वहाँ मुझे धान की बुआई करनी है। तो ये सब जो प्लानिंग है,
1: बिल्कुल,
2: वो प्लानिंग के आधार पर किसान को अपने बीज की व्यवस्था करनी है।
1: जी जी।
2: बीज कितना है, कितनी मात्रा में है, वो सब चीज उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा।
1: जी जी।
2: जैसे बारिश के पहले क्या क्या वो देखेगा, तो जैसे कि मुझे इस खेत के अंदर धान करना है, तो धान का रोप अभी से उसको करना होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो धान का रोप अभी करेंगे तब जाके वो बारिश आएगी, उस समय वो उसकी जो चौपाई है वो कर पाएगा और उसका अधिक उत्पादन ले पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: जैसे वो किसी खेत के अंदर सब्जी की सोच रहा हो, तो सब्जी के लिए तरह तरह की जो रोप अभी से करना पड़ेगा, चाहे वो बैंगन का रोप हो, मिर्च का रोप हो, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, जो भी उसको रोप करना है, वो रोप अभी नर्सरी उसकी तैयार करके जब बारिश आएगी तब वो उसके खेत के अंदर सब्जी उत्पादन के लिए ले सकता है। तो बारिश के पहले ये सब चीज की सावधानियां बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, अपन अभी ध्यान नहीं देते हैं, रोप तैयार नहीं करते हैं, जब बारिश आती है तब अपन का तो मार्केट से बिकाऊ लाना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: और जब बिकाऊ लाएंगे तब उसने कौन सा बीज बोया है, मतलब कौन से बीज की नर्सरी तैयार की है, वो अपन को पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: और ऐसी बीज की नर्सरी तैयार कर दी, अपन मेहनत करें उसको बड़ा करें, और न तो मिर्च लगी न बैंगन लगा।
1: बिल्कुल।
2: तो ये सब चीज सब देखनी पड़ती है कि भाई अपन को यदि अपने खेती के लिए सब्जी उत्पादन करना है, तो अभी से अपन को मन पसंद का जो रोप है, जो घर का रोप है, खास करके जो अपन ने संग्रह करके रखा है कि इसके बैंगन अच्छे हैं, इसकी मिर्च अच्छी लगती है, इसका उत्पादन अच्छा है, उसको जो अपन ने संग्रह करके जो बीज रखा है उसी की ही नर्सरी तैयार करें, जिसकी वजह से अपन को एक तो आज खर्च कम होगा क्योंकि अपन ने घर पे तैयार की है, दूसरी चीज समय पर अपन बुवाई कर पाएंगे, और तीसरी चीज अपन को विश्वास है कि इसके अंदर अपन मेहनत करेंगे तो अपन को अच्छा उत्पादन मिल सकता है।
1: बिल्कुल सर।
2: तो ये चीज के लिए अपन को बारिश के पहले ये सब सावधानियां जरूरी है, जैसे नर्सरी तैयार करना, जैसे कि खेत तैयार करना, जैसे कि पानी बह जाए उसका पाड़ा बांधना, ये सब चीज तरह तरह की अपन को सोचना करना बहुत जरूरी है, तब जाके किसान अपना सही उत्पादन ले सकता है।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि ये बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, यही मैं जानना चाहूंगी कि खाद की व्यवस्था किस तरीके से हमारे भाई बहनों को कर रखनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में अगर हमारे किसान भाई बहनों को खाद की जरूरत पड़ी तो क्या ऐसी विशेष बातें हैं जो उन्हें पहले से ही कर रखनी है।
2: खाद जैसे बताया, जैसे अपन खेत की तैयारी करते हैं, तो उसी समय अपन जो पशुओं का जो खाद का जो खड्डा अपन ने तैयार करवाया है, कंपोस्ट जो किसान ने रखा है, वो खाद खेत के अंदर अभी गर्मी में डालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: जब खेत के अंदर खाद जाएगा, जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ कि भी एक एकड़ के अंदर कम से कम 8-10 टन खाद, गोबर का सड़ा हुआ खाद अपन को डालना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन मिल सके।
1: बिल्कुल।
2: तो ये चीज गर्मी के अंदर पूरी अपन को तैयारी करके खेत को तैयार करते हैं खाद डाल के, तो जैसे बारिश आई उसके अंदर अपन जो अपन ने प्लान किया है वो फसल, वो सब्जी, वो धान अपन उस खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि हमें बारिश आने से पहले ही खेत में खाद वगैरह डालकर पूरी तरीके से उसे अच्छा और उपजाऊ बना देना है, फिर उसी के बाद हमें अगली फसल के लिए जो भी रोप हमने तैयार कर रखा है उसकी बुआई करनी है। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: જાગૃતિ બુન જેમ કે હવે આપણે વૈષ્ણવી પટેલ સર જોડે તક હતા અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડી દીધું હે કે બારિશને પહેલે આપણને હર તે ખેતરની જુતાઈ કરી લેવી હે ને એને સાથે જે ભી ફસલને આપણે તૈયારી કરવા વાળા હો એની આપણને નર્સરી તૈયાર કરવી હે, ખાતની બીજનું પ્રબંધન હોસે તરીકા થકી કરવું હે, તાકી આપણને ઉત્પાદન અસલ તરીકા થકી મળે। કેમ કે આપણે દેખો કે અગર આપણે ભાઈ બહેન બારિશ આવવાને પહેલે જ આ સબ તૈયારી કરી ન રાખેગા તો સહી વખત ટાઈમ આવેગા તઈ વખત એના બજાર માટે નિર્ભર રહેવું પડેગા, ને તઈ વખત કયું બીજ મળે, કઈ ચીજ ન મળે, કેટલી મોંઘી મળે, તો આપણે જે ભાઈ બહેન હે એના નુકસાન થઈ શકે. તેવામાં આપણે ભાઈ બહેનોને બારિશ આવવાની પહેલે જ ખેતરની ઘણાકાની તૈયારી કરી લેવી હે, તાકી ટાઈમ માટે ઈ બુવાઈ કરીને આપણી આમદની વધાવી શકીએ.
0: હવે એન્જલીમાં તો વાતે તો આપણે ઘણા કની કરીને આપ દેખી રહો કે ટાઈમ થઈ ગયો હે સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પડે પણ સાથે સાથે હામરી લઈ કર કેટલી મોરે પડે સૂટા.
1: હવે

0: अंजलि पर कितना अंशु पूरे नरस की थाते पड़ो सूट आशा करा कि जे भी बात रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये अपने किसान भाई बहनों ने गमी होगा। किसान भाई बहन आपने मारो आज नो कार्यक्रम ने अन्वय सलवा वाला गीत संगीत केव लगे एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अपने अना पता माते
1: हवे भाई बहनों लखी लो मारू पतु अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाघथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 3270001 હજી વધારે જાણકારી બદલે આપ અમને ફોન કરી શકો અમારા આના ફોન નંબર માટે અમારો ફોન નંબર હે 9460051234
0: તો કિસાન ભાઈ પણ ફેરી મલંગા અનાસ કાર્યક્રમ મેં એક ના વિષય ને હાથે તાર હુદી
2: રામ રામ
1: રામ રામ

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत हमारी आपसे होती है एक नए विषय को लेकर। आज भी विशेष कार्यक्रम में हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों के स्कूल खुलने ही वाले हैं, ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों में स्कूल खुलने की खुशी किस प्रकार से होती है। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए हम पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों बातचीत का विषय कार्यक्रम में गीत से पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं स्कूल खुलने की खुशी को लेकर। दोस्तों, देखते हैं कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद जब भी स्कूल खुलने का समय आता है तो हमारे बच्चों के मन में एक अलग ही उत्साह हमें देखने को मिलता है। छुट्टियां भले ही आराम, खेल और मौज मस्ती का समय होती है साथियों, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे अपने स्कूल, अपने दोस्तों, शिक्षकों को याद करने लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होती साथियों, ये वह स्थान होता है जहाँ बच्चे सीखते भी हैं, दोस्त भी बनाते हैं और नए नए अनुभवों को भी प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं साथियों। तो आज के इस कार्यक्रम में एक रेडियो नाटक के माध्यम से हम यही जानेंगे कि जब स्कूल खुलने का समय आता है तो बच्चों में खुशियाँ किस प्रकार से देखी जाती है। तो आइए साथियों, सुनते हैं एक रेडियो नाटक को और जानते हैं कि बच्चों में खुशियाँ किस प्रकार से है।
1: अरे नेहा, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो।
2: हाँ, खुश क्यों ना रहूं? कल से स्कूल जो खुल रहे हैं।
1: अरे हाँ यार, सच कहूँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। छुट्टियाँ अच्छी थी लेकिन अब स्कूल जाने का मन कर रहा है।
2: मुझे तो पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है।
1: हाँ, मुझे भी। छुट्टियों में हम घर तो थे लेकिन स्कूल जैसी रौनक कहाँ थी?
2: बिल्कुल, जैसे कि सुबह की प्रार्थना करना, कक्षा में बैठना, शिक्षकों से बातें सुनना, खेल का समय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, सब कुछ कितना अच्छा लगता था ना पूजा।
1: और नेहा, लंच टाइम जब हम सब मिलकर अपना टिफिन साझा करते थे।
2: हाँ पूजा, वही तो सबसे मजेदार समय होता था स्कूल का।
1: अब ये बताओ नेहा कि तुमने छुट्टियों में क्या क्या किया?
2: अरे मैंने तो कुछ कहानियाँ पढ़ी, चित्रकारी की और माँ की भी थोड़ी मदद की, लेकिन सच बताऊँ स्कूल की कमी हर दिन महसूस होती थी।
1: हाँ पूजा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। शुरुआत में छुट्टियाँ बहुत अच्छी लगी लेकिन बाद में रोज वही दिनचर्या होने लगी।
2: क्योंकि स्कूल हमें केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक उद्देश्य भी देता है।
1: हाँ सही कहा नेहा तुमने, स्कूल जाने से दिन भर कुछ नया सीखने को मिलता है।
2: और सबसे बड़ी बात पूजा, स्कूल हमें अनुशासन सिखाता है।
1: नेहा तुम्हें पता है आज मैंने अपना नया बैग भी तैयार कर लिया है।
2: अच्छा, मैंने भी अपनी किताबों पर कवर चढ़ा लिया है और कॉपियों पर नाम लिख दिया है।
1: हाँ नेहा, नए सत्र की शुरुआत में कुछ नया करने का उत्साह अलग ही होता है।
2: बिल्कुल, मैं इस साल पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहूँगी।
1: और मैं अपनी लिखावट सुधारना चाहती हूँ। पिछले साल मेरी टीचर ने कहा था कि अगर मैं अभ्यास करूँ तो मैं अच्छा लिख सकती हूँ।
2: देखा, स्कूल हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर भी देता है पूजा।
1: क्या नेहा तुम्हें याद है पिछले साल हमने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया था?
2: हाँ, और हमने मिलकर मॉडल भी बनाया था।
1: उस समय मुझे पहली बार समझ आया था कि टीम वर्क कितना जरूरी है।
2: और मुझे याद है जब हमारी शिक्षिका ने कहा था कि सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी होता है।
1: बिल्कुल नेहा, सच में स्कूल हमें जीवन जीना सिखाता है।
2: क्या तुम्हें लगता है पूजा कि कुछ बच्चे स्कूल जाने को बोझ समझते हैं?
1: हाँ लगता तो है, लेकिन शायद वे स्कूल की असली अहमियत नहीं समझ पाते।
2: अगर स्कूल ना हो तो हम पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे पूजा?
1: बिल्कुल नेहा, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या कलाकार बनने का रास्ता भी शिक्षा से ही होकर गुजरता है।
2: इसलिए हमें स्कूल जाने का अवसर मिलने पर आभारी होना चाहिए। बहुत से बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं।
1: हाँ नेहा, और साथ में मन लगाकर पढ़ाई भी हमें करनी चाहिए।
2: पूजा, मैं सोच रही हूँ कि कल जब स्कूल पहुँचेंगे तो अपने सभी दोस्तों से मिलकर कितना अच्छा लगेगा ना?
1: हाँ नेहा, मुझे तो अपनी कक्षा देखने की उत्सुकता है
2: और नए अध्याय पढ़ने की भी,
1: साथ में अपने नए सपनों की शुरुआत करने की भी।
2: सही कहा पूजा, हर नया शैक्षणिक वर्ष नई उम्मीद लेकर आता है।
1: हाँ नेहा, एक नई शुरुआत, नए लक्ष्य और नई सफलताएं।
2: हाँ, और उन सफलताओं तक पहुँचने का रास्ता क्या होता है पूजा? वो रास्ता होता है स्कूल।
1: हाँ नेहा, अब तय रहा, इस साल हम और मेहनत करेंगे।
2: हाँ पूजा, और खूब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे।
1: अरे वाह, अब तो मुझे कल का इंतजार ही नहीं हो रहा नेहा।
2: मुझे भी नहीं। चलो अब जल्दी सोते हैं ताकि सुबह समय पर स्कूल पहुंच सके।
1: बिल्कुल नेहा, आखिर कल हमारा प्यारा स्कूल जो खुल रहा है।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने पूजा और नेहा की बात को सुना, हमने जैसा कि सुना कि ये दोनों ही स्कूल खुलने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश

0: उन्होंने अपना बैग भी तैयार कर लिया और उन्होंने भी जैसा कि देखा कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अपने स्कूल अपने दोस्तों की याद आने लगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्कूल केवल एक भवन नहीं होता बल्कि वह स्थान होता है जहाँ बच्चों के सपनों को आकार मिलता है। यहाँ साथियों ज्ञान मिलता है बच्चों को, संस्कार मिलते हैं और दोस्ती मिलती है। ऐसे में स्कूल खुलने की खुशी केवल नई किताबों नई कक्षाओं की खुशी नहीं होती बल्कि ये सीखने बढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की भी खुशी होती है। ऐसे में साथियों हर नया सत्र बच्चों के लिए नई नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्कूल का हर दिन एक नया अवसर है, ऐसा हमें अपने बच्चों को बताना है, कुछ नया सीखने का, कुछ करने का और अपने सपनों को एक कदम की ओर आगे बढ़ाने का। तो जैसा कि साथियों बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे ढेर सारी हुई और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
8: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
7: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
8: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
7: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
8: होपे, एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्ते।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातचीत रहने वाली है ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे आपसे कि ओलंपिक खेल केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये मानवता, शांति, एकता और उत्कृष्टता का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है।
0: बिल्कुल,
1: हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ,
1: ओलंपिक का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं होता है कशिश, बल्कि खेल भावना, अनुशासन, सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा देना भी है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं के लिए ओलंपिक खेल प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम कह सकते हैं कि ओलंपिक आंदोलन युवाओं में उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता जैसे मूल्यों को विकसित करने पर विशेष जोर देते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी रहने वाली है। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन भी हम कार्यक्रम के माध्यम से करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत में ही पहले एक प्यारा सा गीत सुनवा दे दोस्तों को।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दंगल दंगल।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम हमारे युवा साथियों से बात कर रहे हैं ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर।
2: जी हाँ,
1: जैसा कि जागृति जी गीत से पहले आपने बताया था कि ओलंपिक खेल केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं होते, बल्कि ये पूरी दुनिया को एकता, शांति, भाईचारे और उत्कृष्टता का संदेश देने वाला एक वैश्विक आंदोलन है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, जब भी कोई ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी एक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और जो ओलंपिक खेल है वो हमारे युवा साथियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, इनमें संघर्ष, अनुशासन, समर्पण, परिश्रम और सफलता की वास्तविक कहानियां उन्हें देखने को मिलती हैं।
2: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व के देशों को खेलों के माध्यम से एक मंच पर लाना है और शांति तथा सद्भावना का संदेश देना था। आज हम देखते हैं कि ओलंपिक दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जिसमें सैकड़ों देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल ये सिखाते हैं कि जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी से प्रयास करना।
1: जी हाँ।
2: यही कारण है श्रोताओं कि ओलंपिक केवल खिलाड़ियों को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करते हैं। खेल शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो ओलंपिक खेल युवाओं के लिए प्रेरणा का विशाल भंडार है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब कोई युवा खिलाड़ी वर्षों की मेहनत के बाद ओलंपिक पदक जीतता है तब उनकी सफलता लाखों युवाओं को अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की सफलता अचानक नहीं मिलती। देखते हैं कि उसके पीछे वर्षों का अभ्यास रहता है, त्याग, धैर्य और समर्पण होता है। ऐसे में ओलंपिक हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना जरूर पड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम जैसा कि आपने बताया कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ओलंपिक खेल। श्रोता साथियों, वाकई युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जब वे ओलंपिक खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए और सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी कुछ बड़ा करने की प्रेरणा जागृत होती है।
1: जी जी,
2: ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी वर्षों तक, जैसा कि कशिश आपने बताया, कि कठोर परिश्रम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, समर्पण का पालन करते हैं।
1: जी।
2: उनकी सफलता युवाओं को सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके युवाओं को प्रेरित किया। उनकी उपलब्धियां ये संदेश देती है श्रोता साथियों कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे युवा साथियों के लिए ओलंपिक खेलों का महत्व है।
2: बिल्कुल,
1: हमने जैसा कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं और ये युवा साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत किस प्रकार है ये तो जान लिया। आगे हम जानेंगे कि ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल,
1: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर, और गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें भी की थी और हमने आपको कहा था कि गीत के बाद हम जानेंगे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, आज के डिजिटल युग में युवाओं का अधिकांश समय मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बीतता है। इसके कारण शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: ओलंपिक खेल युवाओं को खेलों और व्यायाम की ओर आकर्षित करते हैं। खेलों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत होता है और ऊर्जावान बनता है।
1: बिल्कुल।
0: नियमित खेल गतिविधियां मोटापा, तनाव और कई बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं।
1: जी हाँ।
0: और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए ओलंपिक खेल युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं में सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम मानी गई है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। अब यही हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की।
0: बिल्कुल।
1: तो देखते हैं श्रोता साथियों की केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल उतने ही जरूरी है। क्योंकि खेल में भाग लेने से हमें तनाव कम होता है, हमारे युवा साथियों का आत्मविश्वास बढ़ता है जागृति जी, उनकी एकाग्रता में सुधार होता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। साथ ही जो वर्तमान में हमारे युवा साथियों को समस्याएं हो रही हैं अवसाद और चिंता की, उन समस्याओं से भी राहत मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में हम कह सकते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ी जो होते हैं उनकी मानसिक दृढ़ता युवाओं को ये सिखाती है कि असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी हाँ। और हम कह सकते हैं कशिश कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: बिल्कुल।
0: पदक जीतने पर जब राष्ट्रगान बजता है और राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो प्रत्येक नागरिक गर्व का अनुभव करता है। श्रोताओं, ये भावना युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को मजबूत बनाती है।
1: जी जी।
0: वे समझते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्धियां देश का सम्मान बढ़ा सकती है। और कशिश, युवा जब अपने देश के खिलाड़ियों को सफल होते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी देश के लिए कुछ करने की भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ अगर बात करें समय प्रबंधन की शिक्षा की तो देखते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों की सफलता का सबसे बड़ा आधार अनुशासन होता है।
0: बिल्कुल।
1: वे अपने खान पान के साथ साथ अभ्यास, नींद और दिनचर्या का भी विशेष ध्यान रखते हैं। युवा साथियों, यदि खिलाड़ियों के जीवन से प्रेरणा हम लें तो वे भी समय का सही उपयोग करना सीख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, नियमित अभ्यास की आदत विकसित कर सकते हैं और आत्मनियंत्रण सीख सकते हैं जागृति जी। क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन तो सीखना चाहिए ही, और ओलंपिक खेल इसका सर्वोत्तम और सबसे बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ओलंपिक खेल कई देशों, संस्कृति और भाषाओं के लोगों को एक मंच पर लाता है। ये खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं लेकिन साथ ही एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओलंपिक के मूल मूल्य मित्रता, सम्मान और उत्कृष्टता है जो युवाओं को वैश्विक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। युवा सीखते हैं कि जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। यही भावना विश्व शांति और भाईचारे को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहेंगे। आजकल हम देखते हैं कशिश कि कई युवा नशे और अन्य बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: खेल उन्हें इन बुरी प्रवृत्तियों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। कई सामाजिक और सरकारी पहले भी खेलों को युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का साधन मानती हैं।
1: जी हाँ।
0: खेलों में भाग लेने वाला युवा अपने स्वास्थ्य, समय और भविष्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक होता है। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और गलत रास्तों से बचने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कशिश कि ओलंपिक खेल युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ हम देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश भी हमें मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां युवाओं और खासकर युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला खिलाड़ियों ने जागृति जी ये सिद्ध कर दिया है कि अवसर और मेहनत मिलने पर महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: इससे समाज में लैंगिक समानता की भावना मजबूत होती है और युवतियां भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होती हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज खेल जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण करियर का विकल्प बन चुका है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि ओलंपिक खेलों से प्रेरित होकर हमारे युवा साथी खिलाड़ी बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, खेल प्रबंधन में अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही खेल पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार खेल हमारे लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ। और हम कह सकते हैं कशिश कि नेतृत्व और टीम भावना का विकास भी यही ओलंपिक खेल हमारे अंदर पैदा करते हैं। ओलंपिक खेल युवाओं में नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: टीम खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामूहिक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। इससे उनमें सहयोग, संवाद और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं।
1: जी हाँ।
0: ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा खिलाड़ी केवल स्वयं की सफलता के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी टीम और समाज के हित को भी महत्व देता है। हम कह सकते हैं कि आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहे, खेलों के क्षेत्र में अनेक करियर अवसर उपलब्ध हैं। खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, खेल पत्रकार, खेल प्रबंधक और खेल वैज्ञानिक जैसे कई क्षेत्र युवाओं के लिए खुले हुए हैं।
1: जी हाँ जागृति जी,
0: ओलंपिक खेल युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कशिश कि खेल भी एक सम्मानजनक और सफल करियर बन सकता है। इसमें खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा को सही दिशा में विकसित कर पाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओलंपिक केवल खेलों का महाकुंभ नहीं बल्कि सपनों, संघर्षों और मानव क्षमता का उत्सव है। ये हमारे युवा साथियों को सिखाता है कि जीवन की असली जीत पदक में नहीं बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में छिपी हुई होती है। जब युवा ओलंपिक की भावना को अपनाते हैं तब वे केवल अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। जागृति जी
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को बस हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, सफलता केवल पदक में नहीं जैसा कि कशिश आपने बताया बल्कि उस संघर्ष में छिपी होती है जो हमें मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: अपने जीवन को भी एक ओलंपिक यात्रा की तरह बनाइए जहां लक्ष्य ऊंचे हो, मेहनत सच्ची हो और इरादे अटल हो। याद रखिए, आज का आपका परिश्रम ही कल की आपकी पहचान बनेगा। यदि हर युवा अपने भीतर छिपे खिलाड़ी, योद्धा और विजेता को पहचान ले तो न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो जागृति जी, युवा साथियों से और इस कार्यक्रम से विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में श्रोता साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक ऐसे विषय पर जो केवल किसी एक देश राज्य समाज का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अंजलि
0: बिल्कुल,
1: विषय है आज का, आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है। यानी कि श्रोताओं हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है और विकास की नई नई ऊंचाइयां छुई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इसी विकास की दौड़ में प्रकृति लगातार घायल होती जा रही है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन की समस्या बन चुका है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो ऐसे समय में क्लाइमेट सत्याग्रह की अवधारणा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सत्याग्रह का अर्थ है श्रोता साथियों केवल विरोध करना नहीं बल्कि सत्य और नैतिकता के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना। तो आज जानेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय के बारे में कि क्लाइमेट सत्याग्रह क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि हमने गीत से पहले विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं, आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, केवल जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने की है। एक ऐसा आंदोलन जो अहिंसा, जागरूकता और जिम्मेदारी पर आधारित हो, और यही आंदोलन अंजलि क्लाइमेट सत्याग्रह कहलाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सत्याग्रह का अर्थ जैसा कि हमने गीत से पहले जाना, ये केवल विरोध करना नहीं बल्कि सत्य और नैतिकता के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का मार्ग अपनाया, उसी प्रकार आज पर्यावरण और जलवायु संकट के खिलाफ पूरी दुनिया को सत्याग्रह की आवश्यकता है। क्लाइमेट सत्याग्रह हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बदलाव करें जो पृथ्वी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके।
0: बिल्कुल।
1: यह उपभोग की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर संतुलित और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है।
0: जी हाँ अंजलि, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आज उसी भावनाओं को जलवायु संकट के संदर्भ में अपनाने की आवश्यकता है।
1: जी जी।
0: क्लाइमेट सत्याग्रह का मतलब है कि हम प्रकृति के पक्ष में खड़े हों, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों और नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करें, स्वयं अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जो पृथ्वी के लिए लाभकारी हो।
1: बिल्कुल।
0: ये केवल सरकारों से मांग करने का आंदोलन नहीं है श्रोताओं, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प भी है। कहा गया है कि धरती की रक्षा का यही है आग्रह कि आज समय की मांग है क्लाइमेट सत्याग्रह।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ा है, गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कहीं भीषण बाढ़ आ रही है तो कहीं भयंकर सूखा पड़ रहा है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और मौसम पहले की तुलना में और अधिक अनिश्चित हो गए अंजलि।
1: जी जी।
0: किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें कि आज जलवायु संकट क्यों गंभीर है। तो श्रोता साथियों, पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बढ़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगा।
0: जी हाँ।
1: आज कई क्षेत्रों में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं और जैव विविधता खतरे में पड़ रही है। श्रोता साथियों, यदि समय रहते इस संकट को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जागृति जी बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यदि विचार आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है, क्योंकि आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने जरूरत और लालच के बीच की दूरी को कम कर दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जबकि पृथ्वी की क्षमता सीमित है। गांधी जी का सादगीपूर्ण जीवन, स्थायी संसाधन का उपयोग, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के प्रति सम्मान आज के जलवायु संकट का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्लाइमेट सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण आधार युवा शक्ति है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: यदि युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे तो समाज में व्यापक परिवर्तन अपने आप संभव हो जाएंगे। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि युवा प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना सकते हैं।
1: जी जी।
0: सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके भी जलवायु जागरूकता फैलाई जा सकती है अंजलि। छोटे छोटे प्रयास मिलकर भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है क्लाइमेट सत्याग्रह की, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना। हम जान पा रहे थे कि क्लाइमेट सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों है और युवा पीढ़ी इसमें क्या भूमिका निभा सकती है। यही बात करें तो श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से जलवायु संकट का प्रभाव कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, जल स्रोतों की सुरक्षा करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, इसी के साथ जागृति जी, ऊर्जा की बचत करना और स्थानीय टिकाऊ संसाधनों का उपयोग बढ़ाना। जब पूरा समुदाय मिलकर काम करता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जलवायु संकट केवल शहरों की समस्या नहीं रही है और ना ही केवल गांवों की, ये हम सबकी साझा चुनौती है। गांव में जल संरक्षण, जैविक खेती और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। वहीं शहरों में प्रदूषण नियंत्रण करने होंगे, सार्वजनिक परिवहन और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जब समाज का हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी क्लाइमेट सत्याग्रह सफल होगा। श्रोता साथियों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये बात करें तो हमें पानी की बचत करनी होगी, बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करना होगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा, कचरे का उचित प्रबंधन करना होगा, स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। ये सारे छोटे छोटे कदम मिलकर अंजलि बड़े परिवर्तन की नींव बनते हैं। सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज वो है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, समाज जिम्मेदार बने और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित हो। यदि हमारी नदियां प्रदूषित है, जंगल नष्ट हो रहे हैं और हवा विषैली हो रही है तो हम पूर्ण स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सच्चे स्वराज का आधार है। जलवायु न्याय, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को अपनाकर ही हम वास्तविक स्वराज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ विकास और विनाश के बीच चुनाव करना है।
1: बिल्कुल,
0: जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमें याद दिलाती है श्रोता साथियों कि मानव और प्रकृति का रिश्ता संघर्ष का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। क्लाइमेट सत्याग्रह इसे सह अस्तित्व की पुकार है। यह हमें बताता है कि परिवर्तन केवल कानूनों और नीतियों से नहीं आएगा बल्कि तब आएगा जब हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को अपनाएगा। आज आवश्यकता किसी एक आंदोलन, संगठन या देश की नहीं बल्कि वैश्विक जागरूकता और सामूहिक संकल्प की है।
1: बिल्कुल,
0: जिस दिन हम समझ जाएंगे जागृति जी कि पृथ्वी केवल रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन का आधार है, उसी दिन क्लाइमेट सत्याग्रह विचार नहीं बल्कि जन आंदोलन बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेंगी कि हमने कितनी प्रगति की बल्कि यह पूछेंगी श्रोता साथियों कि हमने उनके लिए कौन सी पृथ्वी छोड़ी। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रकृति के प्रति सम्मान, सादगी, जिम्मेदारी और संरक्षण का मार्ग अपनाना है।
1: बिल्कुल,
0: और एक सुरक्षित, संतुलित और हरित भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ निर्णय केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का भी है, जैसा कि आपने बताया भी था। और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी कि जब पृथ्वी संकट में थी तब हमने क्या किया। इसलिए अब समय केवल चिंता करने का नहीं है बल्कि संकल्प लेने का है। हमें क्लाइमेट सत्याग्रह को जन जन का आंदोलन बनाना होगा। यह आंदोलन किसी सरकार, संस्था या देश तक सीमित नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ये हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। धरती हमारी विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से लिया गया एक अमानत है। यदि हम आज जागे अंजलि तो भविष्य मुस्कुराएगा, लेकिन श्रोताओं, यदि हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आइए प्रकृति के सम्मान, मानवता के कल्याण और सच्चे स्वराज की स्थापना के लिए क्लाइमेट सत्याग्रह का दीप हृदय में जलाइए, क्योंकि धरती बचेगी तभी भविष्य बचेगा। क्लाइमेट सत्याग्रह से ही नया सवेरा सजेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, सच्चा क्लाइमेट सत्याग्रह तब होगा जब हम सुविधा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सीख जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब विकास की योजनाओं में प्रगति की आवाज भी सुनी जाएगी, जब उपभोग की अंधी दौड़ के स्थान पर संतुलित जीवन शैली को महत्व मिलेगा और जब समाज का हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि पृथ्वी की रक्षा करना किसी और का नहीं बल्कि अपना कर्तव्य है। यदि यही सोच सभी व्यक्ति समझ जाए और समय रहते इन सारी चीजों को लेकर सुरक्षा के नियम अपनाना शुरू कर दें तो मानवता के जो संकट है उससे बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जलवायु संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है और क्लाइमेट सत्याग्रह उसी दिशा में उठाया गया सबसे सार्थक कदम है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की क्लाइमेट सत्याग्रह को लेकर, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे पर जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्लाइमेट सत्याग्रह में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है।
0: जी हाँ,
1: तो दोस्तों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं।
0: जी हाँ,
1: आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में छाछ पीने के स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं मनीषा कि गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ठंडक की।
0: जी हाँ,
1: ऊर्जा और संतुलन की। साथियों, तेज धूप, गर्म हवाएं, पसीना और बढ़ता तापमान शरीर को जल्दी थका देता है।
0: जी बिल्कुल कशिश,
1: ऐसे समय में यदि कोई पारंपरिक पेय सबसे अधिक लाभकारी माना गया है तो वो है छाछ। दोस्तों भारतीय रसोई में सदियों से छाछ का विशेष महत्व रहा है। गांव में खेतों से लौटे किसान हो, घर के बुजुर्ग हो या बच्चे,
0: जी हाँ,
1: सभी के लिए छाछ केवल एक पेय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का खजाना रही है। आज आधुनिक जीवन शैली में लोग जैसा कि कोल्ड ड्रिंक और कह सकते हैं कि बाजारों जो पेय होते हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन साथियों इन पेयों की तुलना में छाछ कहीं ज्यादा अधिक पौष्टिक, सस्ती और शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें हमारे दोस्तों से करेंगे मनीषा। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ गीत सुनवाएं हम।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में छाछ पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडक, पानी और सही पोषण की। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाएं श्रोता साथियों शरीर को कमजोर बना देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में अगर कोई देसी और प्राकृतिक पेय शरीर को राहत देता है तो वह है श्रोता साथियों छाछ। भारतीय घरों में सदियों से छाछ का उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: गाँव में खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और आम लोग गर्मी से बचने के लिए छाछ का सेवन करते हैं। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि छाछ दही से बनने वाला एक हल्का और पौष्टिक पेय है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें पानी, दही और कई बार जीरा, काला नमक, पुदीना या धनिया भी मिलाया जाता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। गर्मियों में श्रोता साथियों रोजाना छाछ पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हम कई बीमारियों से बच भी सकते हैं।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गर्मियों में तापमान बढ़ने से शरीर से लगातार पसीना निकलता है।
0: जी हाँ,
1: और पसीने के साथ शरीर में मौजूद पानी और जरूरी लवण भी बाहर निकल जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे दोस्तों शरीर में कमजोरी, चक्कर, थकान और पानी की कमी जैसी समस्याएं होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: और ज्यादा गर्मी के कारण तो कई लोगों को ढेर सारी समस्याएं भी होती है मनीषा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि पेट में जलन, कब्ज, अपच, भूख कम लगना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और शरीर में सुस्ती।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों ऐसे समय में छाछ शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि का काम करती है। यह शरीर को भीतर से ठंडा रखती है और गर्मी के प्रभाव को भी कम करने में सहायता करती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मियों में शरीर का तापमान है वो भी बढ़ जाता है। धूप में निकलने से बेचैनी, थकान और गर्मी महसूस होती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों छाछ हमारे शरीर को अंदर से ठंडक देती है। छाछ पीने से शरीर में ताजगी आती है और गर्मी का असर भी कम हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में लोग दोपहर के भोजन के साथ छाछ जरूर लेते हैं ताकि श्रोता साथियों वे लू और गर्मी से बचाव कर सके। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होने लगती है। जैसा कि आपने बताया था श्रोता साथियों छाछ में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथियों रोजाना छाछ पीने से हमारा शरीर है वो डिहाइड्रेट के खतरे से दूर रहता है और हमारे शरीर को हाइड्रेट बना के रखता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें तो छाछ का सबसे बड़ा गुण ये भी है कि वो शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देती है। जब कोई व्यक्ति साथियों धूप से लौटता है या गर्मी से परेशान होता है तब एक गिलास ठंडी छाछ तुरंत राहत दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि छाछ जो है वो शरीर के तापमान को संतुलित करती है, यह पेट की गर्मी कम करती है और अंदर से ताजगी भी प्रदान करती है।
0: जी हाँ कशिश,
1: मनीषा गर्मियों में जो लोग रोजाना छाछ पीते हैं उन्हें गर्मी भी कम परेशान करती है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही देख सकते हैं श्रोता साथियों कि कोल्ड ड्रिंक कुछ समय के लिए ठंडक का भ्रम दे सकती है, लेकिन छाछ जो है वो वास्तव में शरीर को संतुलन प्रदान करती है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में छाछ सबसे श्रेष्ठ पेय माना जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से गर्मियों में छाछ पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर बातें चली रही हैं। और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है कि छाछ पीने से स्वास्थ्य पर कौन कौन से फायदे होते हैं
1: जी,
0: अगर पाचन शक्ति को बढ़ाने की बात करें साथियों, तो आजकल अनियमित खानपान और बाहर के तले भुने भोजन के कारण लोगों को पाचन संबंधित कई समस्याएं होती है।
1: बिल्कुल,
0: छाछ पाचन सुधारने में बहुत लाभकारी होती है।
1: जी हाँ।
0: और छाछ में ऐसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं साथियों, जो पेट के लिए फायदेमंद भी होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, और साथ ही भोजन के बाद छाछ पीने से खाना जल्दी पचता है।
1: जी हाँ।
0: गैस कम बनती है, पेट हल्का महसूस होता है, कब्ज से राहत मिलती है साथियों, और एसिडिटी भी कम होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गर्मियों में भारी भोजन के बाद छाछ पीने से शरीर को आराम मिलता है, और जिन लोगों को बार बार पेट खराब होने की समस्या रहती है मनीषा, उनके लिए भी छाछ लाभकारी मानी जाती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि छाछ में मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। साथ ही कशिश हम कह सकते हैं कि अगर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत हो तो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। छाछ का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि गर्मियों में धूप और पसीने के कारण त्वचा खराब होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: कई लोगों को मुहासे और रूखापन होने लगता है। श्रोता साथियों, छाछ शरीर को ठंडा रखती है और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। नियमित श्रोता साथियों, इसके सेवन से हमें ताजगी और हमारे चेहरे पर निखार दिखाई देने लगता है हमें। साथ ही कशिश हम देखते हैं कि महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं। गर्मियों में ज्यादा काम करने के कारण शरीर उनका जल्दी थक जाता है। छाछ महिलाओं को ताजगी देती है और उनकी कमजोरी को भी दूर करने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: कैल्शियम और विटामिन होने के कारण यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि गर्मियों में थकान जल्दी महसूस होती है।
1: जी हाँ,
0: कई लोग थोड़ी देर काम करने के बाद ही कमजोरी महसूस करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में छाछ जैसे ठंडे पेय पदार्थ श्रोता साथियों तुरंत ऊर्जा देते हैं। यह हल्की होने के बावजूद पोषण से भरपूर होती है।
1: जी,
0: छाछ पीने से साथियों शरीर में ताजगी आती है और आलस्य भी कम आता है। हम देखते हैं कि आज मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। लोग वजन कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में छाछ वजन नियंत्रित रखने में मदद करती है साथियों। छाछ में हम देखते हैं कि वसा की मात्रा कम होती है, और ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराती है। इससे बार बार भूख नहीं लगती, और जो लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक या मीठे पेय की जगह छाछ पीते हैं उनका वजन संतुलित रहने में सहायता मिलती है मनीषा।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आयुर्वेद में छाछ को बहुत लाभकारी माना गया है। इसे पाचन सुधारने वाला और शरीर को संतुलित रखने वाला पेय भी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार श्रोता साथियों, छाछ पेट के विकारों को दूर करने में और शरीर की स्फूर्ति बनाए रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कशिश कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि छाछ केवल एक साधारण पेय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। गर्मियों में इसका सेवन और ठंडक ऊर्जा और पोषण देता है।
0: बिल्कुल,
1: ये पाचन शक्ति को साथियों मजबूत बनाती है, पानी की कमी को दूर करती है, लू से बचाती है, और साथ ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है।
0: जी हाँ, आपने सही कहा।
1: आज जब लोग बाजार के हानिकारक पेयों की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तब हमें अपने पारंपरिक और देसी पेयों के महत्व को समझना चाहिए। छाछ सस्ती, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हर व्यक्ति गर्मियों में नियमित रूप से छाछ का सेवन करे तो कई बीमारियों से बच सकता है। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छाछ को जरूर शामिल करना चाहिए, और दूसरों को भी इसके फायदों के बारे में हमें जागरूक करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि साथियों छाछ केवल एक साधारण पेय नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन शैली का एक अमूल्य हिस्सा है।
1: जी हाँ,
0: गर्मियों में यह शरीर को ठंडक देने, पाचन सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और पानी की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ कशिश,
0: हम कह सकते हैं साथियों कि आज जब लोग कृत्रिम पेय और अस्वस्थ खानपान की ओर बढ़ रहे हैं, तब छाछ हमें हमारी परंपरा और प्राकृतिक स्वास्थ्य की याद दिलाती है।
1: जी हाँ,
0: बस जरूरत इस बात की है कि हम आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक आदतों को न भूलें। यदि साथियों हर घर में गर्मियों के दौरान छाछ को भोजन का हिस्सा बनाया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि श्रोता साथियों हर घर में गर्मियों के दौरान छाछ का सेवन किया जाए तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से गर्मियों में छाछ पीने के स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ
0: साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे साधारण जीवन को असाधारण कैसे बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर लोग सोचते हैं कि असाधारण जीवन वही होता है जिसमें बहुत धन प्रसिद्धि और बड़ी उपलब्धियां हो, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? श्रोता साथियों नहीं, असाधारण जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण हो, सकारात्मक हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बने और जिसमें संतोष, खुशियां और मानवीय मूल्य जो है वो मौजूद हो। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम अपने साधारण से दिखने वाले जीवन को कैसे असाधारण बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं साधारण जीवन को असाधारण कैसे बनाएं। साथियों, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा और विशेष करना चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसके कार्यों की प्रशंसा करें और वह समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। लेकिन अंजलि जी, हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि असाधारण बनने के लिए असाधारण परिस्थितियां, धन, संसाधन और विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: वास्तव में श्रोता साथियों ऐसा नहीं है। इतिहास और वर्तमान समय के अनेक उदाहरण हमें बताते हैं कि साधारण परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं, परिश्रम, लगन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के माध्यम से।
1: जी हाँ मनीषा, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई गृहिणी है, कोई विद्यार्थी है और कोई मजदूर। बाहर से देखने पर ये जीवन साधारण लग सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इन्हीं साधारण जीवनों में असाधारण बनने की अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। सच्चाई यह है श्रोता साथियों कि महानता अचानक नहीं मिलती, यह छोटे छोटे अच्छे कार्यों, सही आदतों और सकारात्मक सोच से बनती है। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है उसका जीवन धीरे धीरे असाधारण बन जाता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कि असाधारण जीवन को असाधारण जीवन को असाधारण बनाने के कई उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे कि जीवन में उद्देश्य को हमें तय करना है, यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में मनीषा कोई लक्ष्य नहीं होता वह बिना दिशा के चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। यह जरूरी नहीं कि लक्ष्य बहुत बड़ा ही हो। किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, परिवार को खुश रखना, गांव के विकास में योगदान देना और स्वयं को बेहतर इंसान बनाना भी एक महान उद्देश्य हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: जब जीवन में उद्देश्य होता है तो हर दिन ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि साधारण जीवन का अर्थ सामान्य परिस्थितियों में जीना है, जबकि श्रोता साथियों असाधारण बनने का अर्थ अपने कार्यों, व्यवहार और उपलब्धियों को दूसरे की प्रेरणा बनना है।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति में कुछ विशेष करने की क्षमता होती है साथियों। आवश्यकता केवल उस क्षमता को पहचानने और सही दिशा में प्रयत्न करने की होती है। असाधारण बनने की यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं हो सकती, बल्कि श्रोता साथियों ये छोटे छोटे प्रयासों, अच्छे विचारों और निरंतर मेहनत का परिणाम होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते हैं। समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, अच्छी किताबें पढ़ना, समय का सदुपयोग करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना,
0: जी हाँ,
1: ये छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। असाधारण लोग जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं। नई बातें सीखना, नए अनुभव लेना और अपनी गलतियों से सबक लेना व्यक्ति को आगे बढ़ाता है।
0: जी हाँ,
1: आज के समय में सीखने के अनेक साधन हैं। किताबें, रेडियो, इंटरनेट, अनुभवी लोगों की सलाह, सब हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। जो सीखना छोड़ देता है उसका विकास रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहना चाहेंगे कि जीवन में समस्याएं सभी के सामने आती है। अंतर केवल इतना होता है मनीषा कि कुछ लोग समस्याओं को बाधा मान लेते हैं तो कुछ लोग उन्हें अवसर बना लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने का प्रयास करना है। जब मन सकारात्मक होता है तो कठिन परिस्थितियां जो है वो भी हमें मजबूत बनाती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि असाधारण बनने की शुरुआत स्वयं को पहचानने से होती है। जब तक व्यक्ति अपनी ताकत, कमजोरी, रुचि और क्षमताओं को नहीं समझता है तब तक वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति में कोई ना कोई श्रोता साथियों विशेष गुण अवश्य होते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है अंजलि जी, तो कोई कला में।
1: बिल्कुल,
0: कोई खेल में अच्छा होता है तो कोई लोगों की सहायता करने में। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति अपनी विशेषताओं को पहचान कर उन पर कार्य करता है वही आगे चलकर असाधारण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं की पहचान आत्मविश्वास बढ़ाती है श्रोता साथियों और जीवन का उद्देश्य है उसे स्पष्ट करती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। समय पर काम करना, आवश्यक टालम टोल से बचाव और दिनचर्या बनाना सफलता की मजबूत नींव होती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी की मदद करना केवल सामने वाले को ही लाभ नहीं देता बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाता है। एक मुस्कान, एक अच्छी सलाह, किसी जरूरतमंद की सहायता, किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना, ये छोटे कार्य भी जीवन को असाधारण बना सकते हैं। दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए तत्पर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हम हमारे कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कोई अपना व्यक्ति भी अगर हमसे मदद की गुहार करता है तो हम उसे मदद नहीं दे पाते। तो ऐसे में हमें चाहिए कि मदद मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम गुण होना चाहिए और हमें मदद के लिए हमेशा तत्पर भी रहना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि उनको उनका लक्ष्य है वो निर्धारित करना है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता है साथियों, वो बिना दिशा के भटकता रहता है।
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्य जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। लक्ष्य होना चाहिए श्रोता साथियों, जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है उसे प्रयास करने की दिशा पता होती है।
1: बिल्कुल,
0: उसे क्या कार्य करने हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना है और क्या सीखना है, वो सब उसे पता होता है।
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें छोटे छोटे चरणों में श्रोता साथियों बांटना सीखें ताकि उन्हें प्राप्त करना हमारे लिए और आसान हो जाए।
1: जी जी,
0: लक्ष्य व्यक्ति को समय का सही उपयोग भी सिखाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि असाधारण जीवन साधारण जीवन को असाधारण कैसे बना सकते हैं। तो आगे भी इस विषय पर बातें हमारे श्रोता साथियों से यही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी विशेषता को पहचानना है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना, किसी को पढ़ना, तो किसी को खेती में नवाचार करना। अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना जरूरी है। जब हम अपनी क्षमता को सही जगह उपयोग करते हैं तो साधारण जीवन भी विशेष बन जाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि असफलता जीवन का अंत नहीं है। अनेक महान लोगों ने सफलता पाने से पहले कई बार असफलता का सामना किया है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या सुधार करना है। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जीवन की असली खुशी रिश्तों में होती है। परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं। आज लोग भौतिक चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते रिश्तों को संभालना भूल रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि कठिन समय में धन नहीं बल्कि अपने लोग साथ खड़े होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मेहनत को जीवन का हिस्सा उन्हें बनाना है। जीवन में सफलता बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती साथियों।
0: बिल्कुल,
1: मेहनत वह साधन है श्रोता साथियों जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। अनेक महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में लगातार मेहनत की और सफलता प्राप्त की। उन्होंने कभी भाग्य पर भरोसे करके उसे बैठकर स्वीकार नहीं किया। वे अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उसका सामना करता है और लगातार मेहनत करता है, वही जीवन में अपनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है।
0: जी हाँ मनीषा, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखना चाहिए। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन श्रोता साथियों, जब हम अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो मन में संतोष और खुशी बढ़ती है। कृतज्ञता साधारण जीवन को असाधारण बनाने का सरल और प्रभावशाली तरीका है।
1: जी हाँ।
0: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे। एक गाँव में श्रोता साथियों एक साधारण माली रहता था। वह किसी बड़े पद पर नहीं था और

0: बिल्कुल,
1: हम छोटी छोटी चीजों में भी अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। श्रोता साथियों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। हमें ईमानदारी को अपनाना होगा, स्वच्छता पर ध्यान रखना होगा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और दूसरों का सम्मान और सकारात्मक सोच हमें फैलानी होगी। जब एक व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो देश आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अनुशासन है वो सफलता की नींव है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी श्रोता साथियों व्यर्थ हो जाती है। अनुशासित व्यक्ति अपने समय, कार्य और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जानता है। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना अनुशासन के ही उदाहरण है। असाधारण लोग सामान्य लोगों से इसीलिए अलग होते हैं साथियों, क्योंकि वे अपने जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। उनका प्रत्येक दिन एक उद्देश्य के साथ शुरू होता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती है अंजलि जी, लेकिन असाधारण लोग समस्याओं से अक्सर अवसर तलाशना सीख लेते हैं। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाती है और निराशा को दूर रखती है। इसे लोग श्रोता साथियों असफलता से हार नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी रहता है साथियों, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, असाधारण जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता। रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्यों, सही सोच, निरंतर सीखने और दूसरों के प्रति संवेदनशील का फल होता है। दुनिया के अधिकांश प्रेरणादायक लोग साधारण परिस्थितियों से ही निकले हैं। उन्होंने अपने जीवन को किसी जादू से नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत, धैर्य, सेवा भाव से असाधारण बनाया है। इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानिए। हर दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार, समाज और कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। जीवन की छोटी खुशियों का आनंद लीजिए और हर परिस्थिति में सीखने का अवसर खोजिए। याद रखिए श्रोता साथियों कि असाधारण बनने के लिए असाधारण परिस्थितियों की ही नहीं, बल्कि असाधारण दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम साधारण कार्यों को भी पूरे मन, लगन, सकारात्मकता के साथ करते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। हो सकता है श्रोता साथियों कि दुनिया हमें बहुत बड़ा व्यक्ति न माने, लेकिन यदि हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुरान आती है, किसी को हिम्मत मिलती है और किसी का जीवन बेहतर होता है, तो यही सच्ची असाधारणता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है साथियों, बल्कि उसका ही एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: कोई व्यक्ति बिना असफलताओं का सामना किए महान नहीं बन सकता।
1: जी जी,
0: असाधारण लोग असफलताओं से डरते नहीं है साथियों, वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। असफलता व्यक्ति को मजबूत बनाती है, धैर्य सिखाती है और सफलता में बड़े मूल्यों को समझाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, जीवन में मिलने वाली असफलताओं को अवसर के रूप में आप स्वीकार करना सीखें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन को साधारण नहीं मानना है और हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी साधारण जीवन को असाधारण कैसे बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: यही अंजलि जी हम समय के सदुपयोग की बात करी तो हम देखते हैं कि समय संसार का सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन खोकर श्रोता साथियों वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। असाधारण लोग समय के महत्व को समझते हैं, वे अपने दिन की योजना बनाते हैं और आवश्यक कार्यों को समय पर करना सीखते हैं। समय का सदुपयोग श्रोता साथियों करने वाला व्यक्ति संसाधनों में भी कभी हार नहीं मानता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे महान बनाने के अवसर हमें हर दिन मिलते हैं। असाधारण जीवन केवल इतिहास की किताबों में दर्ज लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की पहुंच में है जो अपने जीवन को जागरूकता, मेहनत और अच्छे मूल्यों के साथ जीना चाहता है।
0: बिल्कुल,
1: एक साधारण किसान अपनी ईमानदारी से, एक गृहिणी अपने परिवार के प्रति समर्पण से, एक शिक्षक अपने ज्ञान से और एक विद्यार्थी अपने अनुशासन से असाधारण बन सकता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि और बड़े पदों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता वह है जिसमें मन को संतोष मिले, रिश्तों में अपनापन हो और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर मिले। जिस व्यक्ति का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाता है, उसका जीवन अपने आप विशेष बन जाता है।
0: जी हाँ,
1: हमें यह समझना होगा कि जीवन में परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही अच्छे विचार, अच्छी आदतें और निरंतर प्रयास समय के साथ हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। इसलिए यदि आज परिस्थितियां सामान्य हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, किसी एक व्यक्ति की मदद करेंगे, अपने समय का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हम शिकायतों की जगह समाधान खोजेंगे, निराशा की जगह उम्मीद जगाएंगे और स्वार्थ की जगह सहयोग का रास्ता अपनाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है श्रोता साथियों, उसकी प्रगति है वो भी रुक जाती है।
1: बिल्कुल,
0: असाधारण लोग हमेशा नई बातों को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे पुस्तकें पढ़ते हैं, अनुभव से सीखते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नई जानकारी और नए कौशल व्यक्ति को बदलती दुनिया के साथ कदम बढ़ाने का मौका देते हैं। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आत्मविश्वास सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता बनाए रखता है। यह उसे चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों को स्वीकार करने का साहस देता है। आत्मविश्वास श्रोता साथियों विकास की छोटे छोटे कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जीवन की महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम जो कुछ भी हैं उसका उपयोग कितनी सकारात्मकता और सार्थकता के साथ करते हैं। जब हमारे विचार ऊंचे होते हैं, कर्म श्रेष्ठ होते हैं और उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब साधारण दिखने वाला जीवन भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसे विश्वास के साथ आगे हमें बढ़ना है कि अपने भीतर भी वह शक्ति है जो आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकती है। क्योंकि असाधारण जीवन की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं बल्कि आज और अभी से ही शुरू हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो महसूस होता है कि खुशहाल और सार्थक जीवन का रहस्य किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि जीने के तरीके में छिपा होता है। जीवन की असली खूबसूरती इस बात में है कि हम हर परिस्थिति में अपने भीतर की अच्छाई, उत्साह और मानवीयता को जीवित रख सके। यही गुण एक साधारण व्यक्ति को भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कई बार मनीषा हम सोचते हैं कि जब परिस्थितियां बदलेंगी तब हम बेहतर जीवन जी पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने की बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारी सोच बदलती है तो चुनौतियां अवसर बनने लगती है, मुश्किलें अनुभव में बदल जाते हैं और साधारण जीवन भी नई संभावनाओं से भर जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि असाधारण जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति समाज, देश और मानवता के लिए कुछ करता है साथियों, उसका जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। दूसरों की सहायता करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और जरूरतमंद लोगों के सहयोग करना श्रोता साथियों हमारे जीवन को विशेष बनाता है। साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव व्यक्ति को सम्मान और आत्मसंतोष प्रदान करता है। ऐसे लोग अपनी पहचान को अपने कार्यों से बनाते हैं। देखते हैं श्रोता साथियों कि जीवन में रिश्ते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार, मित्र और समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध व्यक्ति को भावनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। अच्छे संबंध जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देते हैं। साथियों सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित संबंध व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है अंजलि जी, उसे भी प्रेम और सम्मान मिलता है।
1: जी हाँ मनीषा, एक असाधारण जीवन वह है जिसमें व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं बल्कि उसका सम्मान करता है।
0: जी हाँ,
1: वह अपने सपनों को भी देखता है और पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। वह सफलता मिलने पर विनम्र रहता है और असफलता मिलने पर धैर्य नहीं खोता। ऐसे लोग समाज में बड़े पदों के कारण नहीं बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार के कारण पहचाने जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि कल के मुकाबले आज समय को बेहतर बनाना है। यदि हम हर दिन अपने व्यवहार, ज्ञान, संवेदनशीलता और कार्यक्षमता में थोड़ा सा सुधार कर सकें तो कुछ वर्षों बाद हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यही निरंतर विकास जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हम अपने जीवन में शिकायतों की जगह आभार, आलस्य की जगह कर्म, नकारात्मकता की जगह आशा और निराशा की जगह विश्वास को स्थान दें। अपने सपनों को जीवित रखें, अपने मूल्यों को मजबूत रखें और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखें।
0: जी हाँ,
1: दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों और सकारात्मक सोच के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जीवन को असाधारण बनाने के लिए किसी विशेष दिन, विशेष साधन या विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है एक जागरूक मन, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और लगातार आगे बढ़ने के साहस की। यदि
0: हाँ,
1: ये तीनों हमारे पास हैं, तो हमारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रयास और प्रत्येक अनुभव हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे ले जाएगा।
0: जी हाँ,
1: तो यही किसी भी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिसमें हमेशा सकारात्मकता ही हमारे पास बनी रहे।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साधारण जीवन को असाधारण बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए श्रोता साथियों आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाए, अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसका विकास करे, सीखने की प्रक्रिया को कभी छोड़े नहीं, अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करे। असाधारण जीवन का निर्माण श्रोता साथियों एक दिन में नहीं होता बल्कि यह छोटे छोटे अच्छे निर्णय, निरंतर दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम होते हैं। अंजलि जी, जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित रखकर दूसरों के कल्याण से नहीं जोड़ता है, तब वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर व्यक्ति दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, सीखने का प्रयास करे और अपनी सफलताओं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे तो वो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो अवश्य पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

तकी निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मसूरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी अपने पसंदीदा नगमे सुनना चाहते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM के माध्यम से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, तो ज़रूर सुन सकते हैं। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको करना है SMS हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर साथियों मैं फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने पसंदीदा नगमे हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं अनुमति चाहूंगी पहली फरमाइश की ओर बढ़ने की। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं, तो जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नथना पंजाब से हैं, हरिंदर छिंदा, जसवीर जस्से, सीता और गीता जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं, पंडरपुर से हैं तालुका से जाखिल मुलाणी, सुबेया सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसर भी, बानो भी, बादशाह मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार सदस्यगण। टिटीरी बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सालिक अली खान, सालिक अली खान, सारिक अली खान। और भी श्रोता साथी रोहिदास चौक से जुड़ रहे हैं सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। मस्तान पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। साथियों, बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी जी, अर्जुन भारती, अंजलि जी, नितिन जगमोहन जी और सुधीर नितिन, सुषपाल अकेला जी, भुवनेश्वरी देवी जी। और दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं, तो जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, आपको बताना चाहूंगी, नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं अक्सर इस दुनिया में। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। बताना चाहूंगी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बिंदी शाह। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, सुनना चाह रहे हैं। श्रोता साथी हैं बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, अब्दुल गतार अब्बासी। कोका बिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मुरर जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। सुकरी कला से अमीश शकुन, आरुषिका और अंजलि जंगेल। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विल, विपुल कामड़े जी। और भी हमारे दोस्त इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं अक्सर इस दुनिया में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है निमानाबाद हरियाणा से। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी, साधना सरकम। गीत के बोल हैं, चोरी चोरी दिल तेरा हम चुराएंगे। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह अरोड़ा, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंजुटवाड़ा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी। रतलाम से जुड़ना चाह रहे जगदीश धायक, जंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी। साथियों छत्तीसगढ़ से हैं बलकन वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी, नवनीत भाटिया। छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। और भी श्रोता साथी गणेशपुर से हैं फिरासत हुसैन, अलक कुमार जहां, मोहम्मद अल्फीज, नाहिरा गुड़िया, शिफा सिमरन जी और शेवाद शेख जी। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए श्रोताओं, दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे बनाएंगे, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, बताना चाहूंगी अगली फरमाइश का गीत है हमारे बीच मलकापुर महाराष्ट्र से जो आया है। फरमाइश करता है शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनादी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोडकर। इन श्रोताओं की फरमाइश है सुनाया जाए इम्तिहान फिल्म का गीत चाहा था बहुत ना चाहे तुझे। इस गीत को आवाज़ दी है साथियों कुमार सानू जी ने और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन जी। दोस्तों, सहारनपुर से हैं सैयद मसूर, साहिन हसना, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, आदिब अली जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट, जासमीन भट्ट। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं राजू मिगलानी जी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, और ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ ही रही हैं, इसी बीच फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि आया शिवाजी नगर खंडवा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन जी। और भी दोस्त हमारे इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। बाबा कुटीर रायकट से हैं शिव कुमार चौहान, आशिक चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुक्कू जी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। और भी साथी जुड़ रहे हैं, जफराबाद से हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षदा देशमुख। गिरडीह झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावा नवाज, असन नवाज, बाबू एट मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। नवाशहर पंजाब से हैं गंगनदीप थाटी, तीता कुमारी थांडी, प्रशांत प्रियम, वामिका थांडी, वाणी थांडी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं कुंभारियली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन और संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, फिल्म का नाम है कृष्णा कोटेज, गीत के बोल हैं सुना सुनहा लम्हा लम्हा। इस गीत को आवाज दी है श्रेय घोषाल जी ने और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने जी और भी साथी श्री रामपुर से इसे गीत को सुनना चाह रहे हैं गणेश अविका जी, अशोक कुमार अविका जी, विकास अनु कुमार, अर्चना कुमार, अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शाइसा सोनवाने ये पुनावले से जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राधा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। साथियों, मारवाड़ बेड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। आदर नगर लक्सर हरिद्वार से है ताज मदनसारी, गुलाम शाबिराही, मेहराज जहां। कलानोर से है नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुना सुना लम्हा लम्हा। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत सदर बाजार कुरावली से आया है। श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है दम लगा के हई शाह, गीत के बोल है ये मोह मोह के धागे। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी पत्रोड़ से हैं, विजय अंबाड़कर, सुनीता अंबाड़कर, अक्षय, राधिका, ऋषिकेश अंबाड़कर जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, अजय डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानकचल मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू भाविक का सिक्का और कोयल सिक्का जी। अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच बिलासपुर छत्तीसगढ़

से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, गुणा श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, ये मोह मोह के धागे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बरका काना से। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, गीत के बोल ही शोखियों में घुला जाए। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करते हैं अवताज जाल, साइन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सोहिनी, अफताब मलिक जी। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत की अनुरोध करता है जाकुत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ रहे हैं किशोर वडेतकर, शुभम वडेतकर, पन्नू जी वडेतकर। नेहरू चौक पेठन से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं सोपान तावड़ी, नारायण और आशीष महेकर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही शोखियों में घोला जाए। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, गीत के इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत की फरमाइश करता है बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे डापकी रोड अकुला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ घोड़ाने, अर्चनाताई घोड़ाने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी घोड़ाने। पंजाब से जुड़ना चाह रही बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। छत्तीसगढ़ मदनपुर से जुड़ रहे हैं श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू और राहुल जी शाहू। अस्तुपुरा जिला महू से जुड़ना चाह रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला जी आजाद। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मजबूर। गीत के बोल हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्याम कीटी, वंदना कीटी, कार्तिक कीटी, भाविका कीटी और कीटी परिवार के सभी सदस्य गंजुड़ रहे हैं। गंजुड़वारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद आशमी हाशमी, शमशुल कमर राही जी। बक्सर बिहार से जुड़ रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुत्रमेश शाहू जी। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अलीबाजी अंसारी, दानिश जी अंसारी। बाजार बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। सरिमपुर बक्सर से जुड़ रही राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। भेड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी कुटलीश जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। फिल्म का नाम है मजबूर। गीत की बोल है आदमी जो कहता है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वासिम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं तेरा मेरा साथ रहे। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिक शेख, नाजिया नाशिक, साहिद शेख अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं। जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जिमेब मुजावर और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोहनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तेरा मेरा साथ रहे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोल है गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शबीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रणाली, पार्थ जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली जी और निशा जी। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशाने और निमित आहूजा जी। छत्रपति संभाजीनगर से जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल जी राजेश। एकता कोहली ने रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांशी वर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जक्शन मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत की बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला भेंडी, विजय शुभम, पवन जरिए और सचिव जी। बुलढाणा महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं सर्वत दादा पाटिल, भगवान जी पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी पाटिल, सानिका जी पाटिल। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आवलपुर से शेख हबीब, छोटूबाई शेख, साजन शेख, फैजाज शेख, फारूक शेख, वसीम जी शेख, अफसाना शेख, अश्मीरा जी, इरफान शेख, जन्नत शेख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, मोनू, मानस जी राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश इस गीत को, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, गीत के बोल हैं 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। इस गीत की फरमाइश करते हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बीबी वेदही जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी, कुम्हारी अंकिता जी जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जयवंती जी केवट। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, झारखंड से अब्बास आलम, अमजल अली लाडली जी, बीबी निशा और सभी मित्र। गजर द्वारा उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीनिवास, रंजन शाहू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सी, उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुष शौर्या, दिनेश जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है शिवाजी नगर बटाली देशमुख सिंह। फिल्म का नाम है क्रांति। गीत के बोल है जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है राजेश खोबरखेड़ी, शिव सागर खोबरखेड़ी, इंद्राताई खोबरखेड़ी, जंगूताई चक्कूताई खोबरखेड़ी। बुल्ढाणा से जुड़ना चाह रही हैं दीपाली रामधाड़ी, स्वराज रामधाड़ी। अमरावती से जुड़ रही हैं सुनेना पवन, तनुजा जी पवन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं। गंजुडवारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से हरिभाव भिड़वी, श्रवण भिड़वी और अनिकेत जी। इस गीत के अनुरोध करता है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से छन्नूलाल श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत थी। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

भाइयों बनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। हमें आशा करा कि आज नी सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या एने बल्ले आप अमने राय सुझाव आली शको अमारे अणा पता माते। अमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारू फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नु। राम राम।

0: कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। स्वयं के साथ की
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बोन हूँ था का? अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके,
3: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातचीत रहने वाली है ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे आपसे कि ओलंपिक खेल केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये मानवता, शांति, एकता और उत्कृष्टता का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है।
0: बिल्कुल,
1: हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ,
1: ओलंपिक का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं होता है कशिश, बल्कि खेल भावना, अनुशासन, सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा देना भी है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं के लिए ओलंपिक खेल प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम कह सकते हैं कि ओलंपिक आंदोलन युवाओं में उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता जैसे मूल्यों को विकसित करने पर विशेष जोर देते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी रहने वाली है। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन भी हम कार्यक्रम के माध्यम से करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत में ही पहले एक प्यारा सा गीत सुनवा दे दोस्तों को।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दंगल दंगल।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम हमारे युवा साथियों से बात कर रहे हैं ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर।
2: जी हाँ,
1: जैसा कि जागृति जी गीत से पहले आपने बताया था कि ओलंपिक खेल केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं होते, बल्कि ये पूरी दुनिया को एकता, शांति, भाईचारे और उत्कृष्टता का संदेश देने वाला एक वैश्विक आंदोलन है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, जब भी कोई ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी एक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और जो ओलंपिक खेल है वो हमारे युवा साथियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, इनमें संघर्ष, अनुशासन, समर्पण, परिश्रम और सफलता की वास्तविक कहानियां उन्हें देखने को मिलती है।
2: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व के देशों को खेलों के माध्यम से एक मंच पर लाना है और शांति तथा सद्भावना का संदेश देना था। आज हम देखते हैं कि ओलंपिक दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जिसमें सैकड़ों देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल ये सिखाते हैं कि जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी से प्रयास करना।
1: जी हाँ।
2: यही कारण है श्रोताओं कि ओलंपिक केवल खिलाड़ियों को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: खेल शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो ओलंपिक खेल युवाओं के लिए प्रेरणा का विशाल भंडार है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब कोई युवा खिलाड़ी वर्षों की मेहनत के बाद ओलंपिक पदक जीतता है तब उनकी सफलता लाखों युवाओं को अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की सफलता अचानक नहीं मिलती। देखते हैं कि उसके पीछे वर्षों का अभ्यास रहता है, त्याग, धैर्य और समर्पण होता है। ऐसे में ओलंपिक हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना जरूर पड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम जैसा कि आपने बताया कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ओलंपिक खेल। श्रोता साथियों, वाकई युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जब वे ओलंपिक खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए और सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी कुछ बड़ा करने की प्रेरणा जागृत होती है।
1: जी जी,
2: ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी वर्षों तक, जैसा कि कशिश आपने बताया, कि कठोर परिश्रम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, समर्पण का पालन करते हैं।
1: जी,
2: उनकी सफलता युवाओं को ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके युवाओं को प्रेरित किया। उनकी उपलब्धियां ये संदेश देती है श्रोता साथियों कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे युवा साथियों के लिए ओलंपिक खेलों का महत्व है।
2: बिल्कुल,
1: हमने जैसा कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं और ये युवा साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत किस प्रकार है ये तो जान लिया। आगे हम जानेंगे कि ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल,
1: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर, और गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें भी की थी और हमने आपको कहा था कि गीत के बाद हम जानेंगे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, आज के डिजिटल युग में युवाओं का अधिकांश समय मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बीतता है। इसके कारण शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: ओलंपिक खेल युवाओं को खेलों और व्यायाम की ओर आकर्षित करते हैं। खेलों में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत होता है और ऊर्जावान बनता है।
1: बिल्कुल।
0: नियमित खेल गतिविधियां मोटापा, तनाव और कई बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं।
1: जी हाँ।
0: और कहा भी क्या है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए ओलंपिक खेल युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं में सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम मानी गई है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। अब यहीं हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की।
0: बिल्कुल।
1: तो देखते हैं श्रोता साथियों की केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल उतनी ही जरूरी है। क्योंकि खेल में भाग लेने से हमें तनाव कम होता है, हमारे युवा साथियों का आत्मविश्वास बढ़ता है जागृति जी, उनकी एकाग्रता में सुधार होता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। साथ ही जो वर्तमान में हमारे युवा साथियों को समस्याएं हो रही हैं अवसाद और चिंता की, उन समस्याओं से भी राहत मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में हम कह सकते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ी जो होते हैं उनकी मानसिक दृढ़ता युवाओं को ये सिखाती है कि असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी हाँ। और हम कह सकते हैं कशिश कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: बिल्कुल।
0: पदक जीतने पर जब राष्ट्रगान बजता है और राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो प्रत्येक नागरिक गर्व का अनुभव करता है। श्रोताओं, ये भावना युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को मजबूत बनाती है।
1: जी जी।
0: वे समझते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्धियां देश का सम्मान बढ़ा सकती है। और कशिश, युवा जब अपने देश के खिलाड़ियों को सफल होते हुए देखते हैं तो उनके भीतर भी देश के लिए कुछ करने की भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ अगर बात करें समय प्रबंधन की शिक्षा की तो देखते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों की सफलता का सबसे बड़ा आधार अनुशासन होता है।
0: बिल्कुल।
1: वे अपने खान पान के साथ साथ अभ्यास, नींद और दिनचर्या का भी विशेष ध्यान रखते हैं। युवा साथियों, यदि खिलाड़ियों के जीवन से प्रेरणा हम लें तो वे भी समय का सही उपयोग करना सीख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, नियमित अभ्यास की आदत विकसित कर सकते हैं और आत्मनियंत्रण सीख सकते हैं जागृति जी। क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन तो सीखना चाहिए ही, और ओलंपिक खेल इसका सर्वोत्तम और सबसे बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ओलंपिक खेल कई देशों, संस्कृति और भाषाओं के लोगों को एक मंच पर लाता है। ये खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं लेकिन साथ ही एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओलंपिक के मूल मूल्य मित्रता, सम्मान और उत्कृष्टता है जो युवाओं को वैश्विक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। युवा सीखते हैं कि जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। यही भावना विश्व शांति और भाईचारे को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहेंगे। आजकल हम देखते हैं कशिश कि कई युवा नशे और अन्य बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: खेल उन्हें इन बुरी प्रवृत्तियों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। कई सामाजिक और सरकारी पहले भी खेलों को युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का साधन मानती हैं।
1: जी हाँ।
0: खेलों में भाग लेने वाला युवा अपने स्वास्थ्य, समय और भविष्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक होता है। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और गलत रास्तों से बचने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कशिश कि ओलंपिक खेल युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ हम देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश भी हमें मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां युवाओं और खासकर युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला खिलाड़ियों ने जागृति जी ये सिद्ध कर दिया है कि अवसर और मेहनत मिलने पर महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: इससे समाज में लैंगिक समानता की भावना मजबूत होती है और युवतियां भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होती हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज खेल जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण करियर का विकल्प बन चुका है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि ओलंपिक खेलों से प्रेरित होकर हमारे युवा साथी खिलाड़ी बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, खेल प्रबंधन में अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही खेल पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार खेल हमारे लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ। और हम कह सकते हैं कशिश कि नेतृत्व और टीम भावना का विकास भी यही ओलंपिक खेल हमारे अंदर पैदा करते हैं। ओलंपिक खेल युवाओं में नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: टीम खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामूहिक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। इससे उनमें सहयोग, संवाद और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं।
1: जी हाँ।
0: ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा खिलाड़ी केवल स्वयं की सफलता के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी टीम और समाज के हित को भी महत्व देता है। हम कह सकते हैं कि आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहे, खेलों के क्षेत्र में अनेक करियर अवसर उपलब्ध हैं। खिलाड़ी, कोच, फिटनेस ट्रेनर, खेल पत्रकार, खेल प्रबंधक और खेल वैज्ञानिक जैसे कई क्षेत्र युवाओं के लिए खुले हुए हैं।
1: जी हाँ जागृति जी,
0: ओलंपिक खेल युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कशिश कि खेल भी एक सम्मानजनक और सफल करियर बन सकता है। इसमें खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा को सही दिशा में विकसित कर पाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओलंपिक केवल खेलों का महाकुंभ नहीं बल्कि सपनों, संघर्षों और मानव क्षमता का उत्सव है। ये हमारे युवा साथियों को सिखाता है कि जीवन की असली जीत पदक में नहीं बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में छिपी हुई होती है। जब युवा ओलंपिक की भावना को अपनाते हैं तब वे केवल अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। जागृति जी
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को बस हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, सफलता केवल पदक में नहीं जैसा कि कशिश आपने बताया बल्कि उस संघर्ष में छिपी होती है जो हमें मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: अपने जीवन को भी एक ओलंपिक यात्रा की तरह बनाइए जहां लक्ष्य ऊंचे हो, मेहनत सच्ची हो और इरादे अटल हो।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए, आज का आपका परिश्रम ही कल की आपकी पहचान बनेगा। यदि हर युवा अपने भीतर छिपे खिलाड़ी, योद्धा और विजेता को पहचान ले तो न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो जागृति जी, युवा साथियों से और इस कार्यक्रम से विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से ओलंपिक खेलों के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत हमारी आपसे होती है एक नए विषय को लेकर। आज भी विशेष कार्यक्रम में हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की स्कूल खुलने ही वाली है, ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों में स्कूल खुलने की खुशी किस प्रकार से होती है। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए हम पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों बातचीत का विषय कार्यक्रम में गीत से पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं स्कूल खुलने की खुशी को लेकर। दोस्तों, देखते हैं कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद जब भी स्कूल खुलने का समय आता है तो हमारे बच्चों के मन में एक अलग ही उत्साह हमें देखने को मिलता है। छुट्टियां भले ही आराम, खेल और मौज मस्ती का समय होती है साथियों, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे अपने स्कूल, अपने दोस्तों और शिक्षकों को याद करने लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होती साथियों, ये वह स्थान होता है जहाँ बच्चे सीखते भी हैं, दोस्त भी बनाते हैं और नए नए अनुभवों को भी प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं साथियों। तो आज के इस कार्यक्रम में एक रेडियो नाटक के माध्यम से हम यही जानेंगे कि जब स्कूल खुलने का समय आता है तो बच्चों में खुशियां किस प्रकार से देखी जाती है। तो आइए साथियों, सुनते हैं एक रेडियो नाटक को और जानते हैं कि बच्चों में खुशियां किस प्रकार से है।
1: अरे नेहा, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो।
2: हाँ, खुश क्यों ना रहूं? कल से स्कूल जो खुल रहे हैं।
1: अरे हाँ यार, सच कहूँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। छुट्टियाँ अच्छी थी लेकिन अब स्कूल जाने का मन कर रहा है।
2: मुझे तो पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है।
1: हाँ मुझे भी, छुट्टियों में हम घर तो थे लेकिन स्कूल जैसी रौनक कहाँ थी।
2: बिल्कुल, जैसे कि सुबह की प्रार्थना करना, कक्षा में बैठना, शिक्षकों से बातें सुनना, खेल का समय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, सब कुछ कितना अच्छा लगता था ना पूजा।
1: और नेहा, लंच टाइम जब हम सब मिलकर अपना टिफिन साझा करते थे।
2: हाँ पूजा, वही तो सबसे मजेदार समय होता था स्कूल का।
1: अब ये बताओ नेहा कि तुमने छुट्टियों में क्या क्या किया।
2: अरे मैंने तो कुछ कहानियाँ पढ़ी, चित्रकारी की और माँ की भी थोड़ी मदद की, लेकिन सच बताऊँ स्कूल की कमी हर दिन महसूस होती थी।
1: हाँ पूजा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। शुरुआत में छुट्टियाँ बहुत अच्छी लगी लेकिन बाद में रोज वही दिनचर्या होने लगी।
2: क्योंकि स्कूल हमें केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक उद्देश्य भी देता है।
1: हाँ सही कहा नेहा तुमने, स्कूल जाने से दिन भर कुछ नया सीखने को मिलता है।
2: और सबसे बड़ी बात पूजा, स्कूल हमें अनुशासन सिखाता है।
1: नेहा तुम्हें पता है आज मैंने अपना नया बैग भी तैयार कर लिया है।
2: अच्छा, मैंने भी अपनी किताबों पर कवर चढ़ा लिया है और कॉपियों पर नाम लिख दिया है।
1: हाँ नेहा, नए सत्र की शुरुआत में कुछ नया करने का उत्साह अलग ही होता है।
2: बिल्कुल, मैं इस साल पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहूंगी।
1: और मैं अपनी लिखावट सुधारना चाहती हूँ। पिछले साल मेरी टीचर ने कहा था कि अगर मैं अभ्यास करूँ तो मैं अच्छा लिख सकती हूँ।
2: देखा, स्कूल हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर भी देता है पूजा।
1: क्या नेहा तुम्हें याद है पिछले साल हमने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया था।
2: हाँ, और हमने मिलकर मॉडल भी बनाया था।
1: उस समय मुझे पहली बार समझ आया था कि टीम वर्क कितना जरूरी है।
2: और मुझे याद है जब हमारी शिक्षिका ने कहा था कि सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी होता है।
1: बिल्कुल नेहा, सच में स्कूल हमें जीवन जीना सिखाता है।
2: क्या तुम्हें लगता है पूजा कि कुछ बच्चे स्कूल जाने को बोझ समझते हैं?
1: हाँ लगता तो है, लेकिन शायद वे स्कूल की असली अहमियत नहीं समझ पाते।
2: अगर स्कूल ना हो तो हम पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे पूजा?
1: बिल्कुल नेहा, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या कलाकार बनने का रास्ता भी शिक्षा से ही होकर गुजरता है।
2: इसलिए हमें स्कूल जाने का अवसर मिलने पर आभारी होना चाहिए। बहुत से बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं।
1: हाँ नेहा, और साथ में मन लगाकर पढ़ाई भी हमें करनी चाहिए।
2: पूजा, मैं सोच रही हूँ कि कल जब स्कूल पहुँचेंगे तो अपने सभी दोस्तों से मिलकर कितना अच्छा लगेगा ना?
1: हाँ नेहा, मुझे तो अपनी कक्षा देखने की उत्सुकता है
2: और नए अध्याय पढ़ने की भी,
1: साथ में अपने नए सपनों की शुरुआत करने की भी।
2: सही कहा पूजा, हर नया शिक्षण वर्ष नई उम्मीद लेकर आता है।
1: हाँ नेहा, एक नई शुरुआत, नए लक्ष्य और नई सफलताएं।
2: हाँ, और उन सफलताओं तक पहुँचने का रास्ता क्या होता है पूजा? वो रास्ता होता है स्कूल।
1: हाँ नेहा, अब तय रहा, इस साल हम और मेहनत करेंगे।
2: हाँ पूजा, और खूब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे।
1: अरे वाह, अब तो मुझे कल का इंतजार ही नहीं हो रहा नेहा।
2: मुझे भी नहीं। चलो अब जल्दी सोते हैं ताकि सुबह समय पर स्कूल पहुंच सके।
1: बिल्कुल नेहा, आखिर कल हमारा प्यारा स्कूल जो खुल रहा है।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने पूजा और नेहा की बात को सुना, हमने जैसा कि सुना कि ये दोनों ही स्कूल खुलने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने अपना बैग भी तैयार कर लिया और उन्होंने भी जैसा कि देखा कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अपने स्कूल, अपने दोस्तों की याद आने लगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्कूल केवल एक भवन नहीं होता, बल्कि वह स्थान होता है जहाँ बच्चों के सपनों को आकार मिलता है। यहाँ साथियों ज्ञान मिलता है बच्चों को, संस्कार मिलते हैं और दोस्ती मिलती है। ऐसे में स्कूल खुलने की खुशी केवल नई किताबों, नई कक्षाओं की खुशी नहीं होती, बल्कि ये सीखने, बढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की भी खुशी होती है। ऐसे में साथियों हर नया सत्र बच्चों के लिए नई नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्कूल का हर दिन एक नया अवसर है, ऐसा हमें अपने बच्चों को बताना है, कुछ नया सीखने का, कुछ करने का और अपने सपनों को एक कदम की ओर आगे बढ़ाने का। तो जैसा कि साथियों बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे ढेर सारी हुई और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
3: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
6: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
7: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
6: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुदेश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
9: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: અંજલિ બોલ, ગીત તો અહીંયા પૂરું અને ગીતની બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરું હા આપણે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીતે કે પહેલા આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ કે વરસાદને પહેલે ખેતીનું રખરખાવ હરતે કર તો આના વિશેની જાણકારી આલવા પહેલે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં પટેલ સર આવ્યા હે એ બતાડેગા કે ખેતરની રખરખાવ હરતે કરવું હે તો પહેલે હમરી લાણાની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે
1: હવે નમસ્કાર
2: નમસ્કાર
1: આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: ધન્યવાદ
1: जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बारिश से पहले अपने खेत की तैयारी कैसे करें।
2: बिल्कुल, बारिश के पहले खेत की तैयारी करना किसान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि किसान को यदि खरीफ सीजन में मतलब बारिश वाली सीजन के अंदर अच्छी फसल लेनी है अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए अपने मिट्टी है जमीन है खेत है उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: तो उसको क्या करना चाहिए कि भी बारिश के पहले खेत को अच्छी तरह से खेड़ाई करनी चाहिए, हल चला देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और क्योंकि रबी फसल वो ले लेता है उस समय थोड़ी बहुत नमी भी रहती है तो उस समय आसानी से खेत हक जाता है, थोड़ा बहुत एक आध महीना पड़ी रहेगी फिर जमीन टाइट हो जाती है फिर हकाई भी नहीं होती है बराबर, तो उस समय थोड़ी नमी के अंदर किसान को उस खेत को जुताई कर लेनी चाहिए ताकि क्या है कि उसकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाए, मतलब अंदर जो छोटे मोटे जो कीटाणु है रोगग्रस्त बहुत सारे कीट रहते हैं वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाए और काफी अच्छी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे।
1: बिल्कुल,
2: दूसरा क्या है किसान को जो बारिश के पहले ध्यान में रखने वाली बात के भी अपना खेत कैसे कहाँ ढलान है तो थोड़ा बहुत समतलीकरण है, यदि कहीं ठेड़े या कहीं पानी ज्यादा बह रहा है तो उसको पत्थर की मेड़ डालना है, कहीं पाली डालना है तो उसको जल निकासी ज्यादा होती है वहां पर उसको बंद बांधना खेत के अंदर बहुत जरूरी है जिसकी वजह से अपनी मिट्टी खेत की बाहर नहीं निकल जाए। और भी जहां जहां समतल है तो चारों तरफ उसको मेड़ डाल देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह अपना खेत की पूर्व तैयारी किसान को कर लेनी चाहिए क्योंकि खेत का पानी खेत के अंदर जितना भी रहेगा इतना किसान के लिए ज्यादा बेनिफिट है और जहां पर जिसी एक कोने में ज्यादा पानी जा रहा है तो वहां पत्थर का बंद करके निकासी देना बहुत जरूरी है। यदि 12 महीने तक यदि खेत में कहीं टूट फूट हुई है तो उसकी रिपेयरिंग करना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सर,
2: तो ये उसका खेत की तैयारी। उसके साथ साथ जैसे बारिश आने वाली है तो अपने बारिश के पहले यदि किसान खेत की तैयारी तो करेगा लेकिन उसके साथ साथ बीज भी उसको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को कौन से खेत के अंदर कौन सी खेती करनी है, मतलब किस खेत में कौन सा बीज बोना है, वो बीज मेरे घर में उपलब्ध है कि नहीं है, है तो किस प्रकार का बीज पड़ा हुआ है, कहीं कीड़े तो नहीं खा गया है, कहीं खराब तो नहीं हो गया है, उगने लायक या उत्पादन लायक बीज है के नहीं, वो सभी चीज किसान को देखनी चाहिए बारिश के पहले।
1: बिल्कुल,
2: बीज उपचार करना चाहिए, बीज वही देखने के बाद उसको सही साफ सफाई करके उसको रख दे क्योंकि बुआई का समय हो उस समय वो बीजोपचार करके लगा दे।
1: बिल्कुल,
2: दूसरी चीज जैसे बारिश आने वाली है उसके पहले अपन बात करें तो भी जैसे साफ सफाई की बात करें
1: जी जी,
2: खेत के चारों तरफ जो अपनी फेंसिंग है बागड़ है, खरपतवार नियंत्रण जैसे अपन बोलते हैं कि भी को किसी भी प्रकार का अंदर झाड़ी है या फिर जो दूसरी चीज उग गई है उसको अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए अपने खेत की। तो क्या है कि ज्यादा खरपतवार ने झाड़ी रही चारों तरफ जो अपन बोलते हैं कि सेड़ा पूरा साफ हो जाए तो अंदर दूसरी बीमारी नहीं आवे, तो सफाई रखना बहुत जरूरी है। और जैसे अपन खेत के अंदर तो रेगुलर उत्पादन लेते हैं
1: जी, बिल्कुल
2: उत्पादन लेते हैं तो उसको भी खुराक की जरूरत रहती है, मिट्टी को भी भोजन की जरूरत रहती है, तो बारिश के पहले पर्याप्त मात्रा में जो फसल लेते हैं तो देसी खाद उसके अंदर डालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: एक एकड़ में 6 से 8 टन कम से कम 10 टन आसपास वो देसी खाद यदि डाल के खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन उसको मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये सब चीजें अपन बारिश के पहले मतलब देखनी चाहिए किसान को, जिसकी वजह से क्या है कि अगली फसल होने वाली जो फसल है उसके अंदर वो अच्छी तरह से उत्पादन ले सकता है और किसी भी प्रकार का उसके अंदर रोग या वो नहीं आ सकता।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि बारिश से पहले किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें खेत की तैयारी कर लेनी है, जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहनों को गहरी जुताई कर लेनी है ताकि मिट्टी में हवा का संचार अच्छे से हो और जो भी कीट हैं जो मित्र कीट हैं वो बचे रहें और जो शत्रु कीट हैं वो उससे मर जाते हैं। इसी के साथ पानी जो है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में जमा हो पाता है और आपके माध्यम से हम ये भी जान पाए कि किस तरीके से बारिश आने से पहले हमें हमारे खेतों के चारों ओर मेड़ लगा देनी है ताकि हमारी मिट्टी बहकर न चली जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में अगर हम इन सारी चीजों को पहले नहीं करते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी मिट्टी बहकर चली जाती है जिससे हमारा उत्पादन जो है वो भी बिगड़ जाता है। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, यही अब मैं आपसे जानना

0: चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अगली फसल के लिए कौन कौन सी तैयारी जो है वो विशेष तौर पर पहले से ही करके रख ले।
1: बिल्कुल, अगली फसल के लिए यदि जो किसान भाइयों को तैयारी करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने खेतों की प्लानिंग,
0: बिल्कुल
1: उसको पहले से ही करनी होगी बारिश के पहले, कि भी मुझे इस खेत के अंदर तिल्ली बोनी है या अरहर और मक्का बोनी है,
0: बिल्कुल,
1: या तो इस खेत के अंदर मेरा नमी है वहां मुझे धान की बुआई करनी है, तो ये सब जो प्लानिंग है,
0: बिल्कुल
1: वो प्लानिंग के आधार पर किसान को अपने बीज की व्यवस्था करनी है।
0: जी जी।
1: बीज कितना है, कितनी मात्रा में है, वो सब चीज उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: जैसे बारिश के पहले क्या क्या वो देखेगा, तो जैसे कि मुझे इस खेत के अंदर धान करना है, तो धान का रोप अभी से उसको करना होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो धान का रोप अभी करेंगे तब जाके वो बारिश आएगी, उस समय वो उसकी जो चौपाई है वो कर पाएगा और उसका अधिक उत्पादन ले पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: जैसे वो किसी खेत के अंदर सब्जी की सोच रहा हो, तो सब्जी के लिए तरह तरह की जो रोप अभी से करना पड़ेगा, चाहे वो बैंगन का रोप हो, मिर्च का रोप हो, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, जो भी उसको रोप करना है वो रोप अभी नर्सरी उसकी तैयार करके जब बारिश आएगी तब वो उसके खेत के अंदर सब्जी उत्पादन के लिए ले सकता है। तो बारिश के पहले ये सब चीज की सावधानियां बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, अपन अभी ध्यान नहीं देते हैं, रोप तैयार नहीं करते हैं, जब बारिश आती है तब अपन का तो मार्केट से बिकाऊ लाना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और जब बिकाऊ लाएंगे तब उसने कौन सा बीज बोया है, मतलब कौन से बीज की नर्सरी तैयार की है, वो अपन को पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसी बीज की नर्सरी तैयार कर दी, अपन मेहनत करें उसको बड़ा करें, और न तो मिर्च लगी न बैंगन लगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सब चीज सब देखनी पड़ती है कि भाई अपन को यदि अपने खेती के लिए सब्जी उत्पादन करना है तो अभी से अपन को मनपसंद का जो रोप है, जो घर का रोप है, खास करके जो अपन ने संग्रह करके रखा है कि इसके बैंगन अच्छे हैं, इसकी मिर्च अच्छी लगती है, इसका उत्पादन अच्छा है, उसको जो अपन ने संग्रह करके जो बीज रखा है उसी की ही नर्सरी तैयार करें, जिसकी वजह से अपन को एक तो आज खर्च कम होगा क्योंकि अपन ने घर पे तैयार की है, दूसरी चीज समय पर अपन बुवाई कर पाएंगे, और तीसरी चीज अपन को विश्वास है कि इसके अंदर अपन मेहनत करेंगे तो अपन को अच्छा उत्पादन मिल सकता है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये चीज के लिए अपन को बारिश के पहले ये सब सावधानियां जरूरी है, जैसे नर्सरी तैयार करना, जैसे कि खेत तैयार करना, जैसे कि पानी बह जाए उसका पाड़ा बांधना, ये सब चीज तरह तरह की अपन को सोचना करना बहुत जरूरी है, तब जाके किसान अपना सही उत्पादन ले सकता है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि ये बातें बहुत अच्छी चल रही है, यही मैं जानना चाहूंगी कि खाद की व्यवस्था किस तरीके से हमारे भाई बहनों को कर रखनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में अगर हमारे किसान भाई बहनों को खाद की जरूरत पड़ी तो क्या ऐसी विशेष बातें हैं जो उन्हें पहले से ही कर रखनी है।
1: खाद जैसे बताया, जैसे अपन खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय अपन जो पशुओं का जो खाद का जो खड्डा अपन ने तैयार करवाया है, कंपोस्ट जो किसान ने रखा है, वो खाद खेत के अंदर अभी गर्मी में डालना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जब खेत के अंदर खाद जाएगा, जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ कि भी एक एकड़ के अंदर कम से कम 8-10 टन खाद, गोबर का सड़ा हुआ खाद अपन को डालना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन मिल सके।
0: बिल्कुल।
1: तो ये चीज गर्मी के अंदर पूरी अपन को तैयारी करके खेत को तैयार करते हैं खाद डाल के, तो जैसे बारिश आई उसके अंदर अपन जो अपन ने प्लान किया है वो फसल, वो सब्जी, वो धान अपन उस खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि हमें बारिश आने से पहले ही खेत में खाद वगैरह डालकर पूरी तरीके से उसे अच्छा और उपजाऊ बना देना है, फिर उसी के बाद हमें अगली फसल के लिए जो भी रोप हमने तैयार कर रखा है उसकी बुवाई करनी है। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જાગૃતિ બુન જેમ કે હવે આપણે વૈશ્વી પટેલ સર જોડે તક હતા અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડી દીધું હે કે બારિશને પહેલે આપણને હરતે ખેતરની જુતાઈ કરી લેવી હે ને એને સાથે જે ભી ફસલની આપણે તૈયારી કરવા વાળા હો એની આપણને નર્સરી તૈયાર કરવી હે, ખાતની બીજનું પ્રબંધન હોસે તરીકા થકી કરવું હે તાકી આપણને ઉત્પાદન અસલ તરીકા થકી મળે, કેમ કે આપણે દેખ હો કે અગર આપણે ભાઈ બોન બારિશ આવવાને પહેલે આ સબ તૈયારી કરી ને રાખીંગા તો સહી વખત ટાઈમ આવેગા તે વખત એને બજાર માટે નિર્ભર રહેવું પડેગા, ને તે વખત કયું બીજ મળે ને કઈ ચીજે ન મળે ને કેટલી મોંઘી મળે તો આપણે જે ભાઈ બોન હે એને નુકસાન થઈ શકે, તેવામાં આપણે ભાઈ બોનોને બારિશ આવવાની પહેલે જ ખેતરની ઘણાકાની તૈયારી કરી લેવી હે તાકી ટાઈમ માટે ઈ બુવાઈ કરીને આપણી આમદની વધાવી શકીએ।
2: હવે અંજલિ બોન, તો વાતે આપણે ઘણા કની કરીને આપ દેખી રહો કે ટાઈમ થઈ ગયો હે સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પડ પણ સાથે સાથે હામ લઈ કર કિતને મોરે પડ સૂટા
0: હવે.

0: अंजलि पर कितना अंशों पूर्ण नड़ा इसकी थाते पड़ो सूट आशा करा कि जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये अपने किसान भाई बहनों ने गमी होगा किसान भाई बहन आपने मारो आज नो कार्यक्रम ने अन्वय सलवा वाला गीत संगीत केव लगे एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अपने अना पता माते
1: हवे भाई बहनों लखी लो मारू पतु अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी पग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमरु पिन कोड नंबर है 3270001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमर अना फोन नंबर माते अमर फोन नंबर है 9460051234
0: तो किसान भाई बन फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
2: राम राम
3: राम राम, राम।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में श्रोता साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक ऐसे विषय पर जो केवल किसी एक देश राज्य समाज का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अंजलि
0: बिल्कुल,
1: विषय है आज का, आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है। यानी कि श्रोताओं हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है और विकास की नई नई ऊंचाइयां छुई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इसी विकास की दौड़ में प्रकृति लगातार घायल होती जा रही है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन की समस्या बन चुका है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो ऐसे समय में क्लाइमेट सत्याग्रह की अवधारणा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सत्याग्रह का अर्थ है श्रोता साथियों केवल विरोध करना नहीं बल्कि सत्य और नैतिकता के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना। तो आज जानेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय के बारे में कि क्लाइमेट सत्याग्रह क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि हमने गीत से पहले विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं, आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, केवल जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने की है। एक ऐसा आंदोलन जो अहिंसा, जागरूकता और जिम्मेदारी पर आधारित हो, और यही आंदोलन अंजलि क्लाइमेट सत्याग्रह कहलाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सत्याग्रह का अर्थ जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि केवल विरोध करना नहीं बल्कि सत्य और नैतिकता के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष का मार्ग अपनाया, उसी प्रकार आज पर्यावरण और जलवायु संकट के खिलाफ पूरी दुनिया को सत्याग्रह की आवश्यकता है। क्लाइमेट सत्याग्रह हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बदलाव करें जो पृथ्वी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके।
0: बिल्कुल।
1: यह उपभोग की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर संतुलित और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है।
0: जी हाँ अंजलि, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आज उसी भावनाओं को जलवायु संकट के संदर्भ में अपनाने की आवश्यकता है।
1: जी जी।
0: क्लाइमेट सत्याग्रह का मतलब है कि हम प्रकृति के पक्ष में खड़े हों, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों और नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करें, स्वयं अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जो पृथ्वी के लिए लाभकारी हो।
1: बिल्कुल।
0: ये केवल सरकारों से मांग करने का आंदोलन नहीं श्रोताओं, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प भी है। कहा गया है कि धरती की रक्षा का यही है आग्रह कि आज समय की मांग है क्लाइमेट सत्याग्रह।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ा है, गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कहीं भीषण बाढ़ आ रही है तो कहीं भयंकर सूखा पड़ रहा है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और मौसम पहले की तुलना में और अधिक अनिश्चित हो गया। अंजलि, किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें कि आज जलवायु संकट क्यों गंभीर है। तो श्रोता साथियों, पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बढ़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगा।
0: जी हाँ।
1: आज कई क्षेत्रों में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं और जैव विविधता खतरे में पड़ रही है। श्रोता साथियों, यदि समय रहते इस संकट को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जागृति जी बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यदि विचार आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है, क्योंकि आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने जरूरत और लालच के बीच की दूरी को कम कर दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जबकि पृथ्वी की क्षमता सीमित है। गांधी जी का सादगीपूर्ण जीवन, स्थायी संसाधन का उपयोग, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के प्रति सम्मान आज के जलवायु संकट का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्लाइमेट सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण आधार युवा शक्ति है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: यदि युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे तो समाज में व्यापक परिवर्तन अपने आप संभव हो जाएंगे। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि युवा प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना सकते हैं।
1: जी जी।
0: सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके भी जलवायु जागरूकता फैलाई जा सकती है अंजलि। छोटे छोटे प्रयास मिलकर भी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है क्लाइमेट सत्याग्रह की, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पा रहे थे कि क्लाइमेट सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों है और युवा पीढ़ी इसमें क्या भूमिका निभा सकती है। यही बात करें तो श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से जलवायु संकट का प्रभाव कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, जल स्रोतों की सुरक्षा करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, इसी के साथ जागृति जी, ऊर्जा की बचत करना और स्थानीय टिकाऊ संसाधनों का उपयोग बढ़ाना। जब पूरा समुदाय मिलकर काम करता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जलवायु संकट केवल शहरों की समस्या नहीं रही है और ना ही केवल गांवों की, ये हम सबकी साझा चुनौती है। गांव में जल संरक्षण, जैविक खेती और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। वहीं शहरों में प्रदूषण नियंत्रण करने होंगे, सार्वजनिक परिवहन और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जब समाज का हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी क्लाइमेट सत्याग्रह सफल होगा। श्रोता साथी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये बात करें तो हमें पानी की बचत करनी होगी, बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करना होगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, सार्वजनिक

0: प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ विकास और विनाश के बीच चुनाव करना है।
0: बिल्कुल,
1: जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमें याद दिलाती है श्रोता साथियों कि मानव और प्रकृति का रिश्ता संघर्ष का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। क्लाइमेट सत्याग्रह इसे सह अस्तित्व की पुकार है। यह हमें बताता है कि परिवर्तन केवल कानूनों और नीतियों से नहीं आएगा बल्कि तब आएगा जब हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को अपनाएगा। आज आवश्यकता किसी एक आंदोलन, संगठन या देश की नहीं बल्कि वैश्विक जागरूकता और सामूहिक संकल्प की है।
0: बिल्कुल,
1: जिस दिन हम समझ जाएंगे जागृति जी कि पृथ्वी केवल रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन का आधार है, उसी दिन क्लाइमेट सत्याग्रह विचार नहीं बल्कि जन आंदोलन बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेंगी कि हमने कितनी प्रगति की बल्कि यह पूछेंगी श्रोता साथियों कि हमने उनके लिए कौन सी पृथ्वी छोड़ी। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रकृति के प्रति सम्मान, सादगी, जिम्मेदारी और संरक्षण का मार्ग अपनाना है।
0: बिल्कुल,
1: और एक सुरक्षित, संतुलित और हरित भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ निर्णय केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का भी है, जैसा कि आपने बताया भी था। और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी कि जब पृथ्वी संकट में थी तब हमने क्या किया। इसलिए अब समय केवल चिंता करने का नहीं है बल्कि संकल्प लेने का है। हमें क्लाइमेट सत्याग्रह को जन जन का आंदोलन बनाना होगा। यह आंदोलन किसी सरकार, संस्था या देश तक सीमित नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: ये हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। धरती हमारी विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से लिया गया एक अमानत है। यदि हम आज जागे अंजलि तो भविष्य मुस्कुराएगा, लेकिन श्रोताओं यदि हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए आइए प्रकृति के सम्मान, मानवता के कल्याण और सच्चे स्वराज की स्थापना के लिए क्लाइमेट सत्याग्रह का दीप हृदय में जलाइए, क्योंकि धरती बचेगी तभी भविष्य बचेगा। क्लाइमेट सत्याग्रह से ही नया सवेरा सजेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, सच्चा क्लाइमेट सत्याग्रह तब होगा जब हम सुविधा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सीख जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: जब विकास की योजनाओं में प्रगति की आवाज भी सुनी जाएगी, जब उपभोग की अंधी दौड़ के स्थान पर संतुलित जीवन शैली को महत्व मिलेगा और जब समाज का हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि पृथ्वी की रक्षा करना किसी और का नहीं बल्कि अपना कर्तव्य है। यदि यही सोच सभी व्यक्ति समझ जाए और समय रहते इन सारी चीजों को लेकर सुरक्षा के नियम अपनाना शुरू कर दें तो मानवता के जो संकट है उससे बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जलवायु संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है और क्लाइमेट सत्याग्रह उसी दिशा में उठाया गया सबसे सार्थक कदम है।
2: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की क्लाइमेट सत्याग्रह को लेकर, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे पर जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्लाइमेट सत्याग्रह में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है।
0: जी हाँ,
1: तो दोस्तों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं।
0: जी हाँ,
1: आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में छाछ पीने के स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं मनीषा कि गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ठंडक की।
0: जी हाँ,
1: ऊर्जा और संतुलन की। साथियों, तेज धूप, गर्म हवाएं, पसीना और बढ़ता तापमान शरीर को जल्दी थका देता है।
0: जी बिल्कुल कशिश,
1: ऐसे समय में यदि कोई पारंपरिक पेय सबसे अधिक लाभकारी माना गया है तो वो है छाछ। दोस्तों भारतीय रसोई में सदियों से छाछ का विशेष महत्व रहा है। गांव में खेतों से लौटे किसान हो, घर के बुजुर्ग हो या बच्चे,
0: जी हाँ,
1: सभी के लिए छाछ केवल एक पेय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का खजाना रही है। आज आधुनिक जीवन शैली में लोग जैसा कि कोल्ड ड्रिंक और कह सकते हैं कि बाजारों जो पेय होते हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन साथियों इन पेयों की तुलना में छाछ कहीं ज्यादा अधिक पौष्टिक, सस्ती और शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें हमारे दोस्तों से करेंगे मनीषा। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ गीत सुनवाएं हम।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में छाछ पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडक, पानी और सही पोषण की। तेज धूप, पसीना और गर्म हवाएं श्रोता साथियों शरीर को कमजोर बना देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में अगर कोई देसी और प्राकृतिक पेय शरीर को राहत देता है तो वह है श्रोता साथियों छाछ। भारतीय घरों में सदियों से छाछ का उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: गाँव में खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और आम लोग गर्मी से बचने के लिए छाछ का सेवन करते हैं। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि छाछ दही से बनने वाला एक हल्का और पौष्टिक पेय है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें पानी, दही और कई बार जीरा, काला नमक, पुदीना या धनिया भी मिलाया जाता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। गर्मियों में श्रोता साथियों रोजाना छाछ पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हम कई बीमारियों से बच भी सकते हैं।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गर्मियों में तापमान बढ़ने से शरीर से लगातार पसीना निकलता है।
0: जी हाँ,
1: और पसीने के साथ शरीर में मौजूद पानी और जरूरी लवण भी बाहर निकल जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे दोस्तों शरीर में कमजोरी, चक्कर, थकान और पानी की कमी जैसी समस्याएं होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: और ज्यादा गर्मी के कारण तो कई लोगों को ढेर सारी समस्याएं भी होती है मनीषा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि पेट में जलन, कब्ज, अपच, भूख कम लगना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और शरीर में सुस्ती।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, ऐसे समय में छाछ शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि का काम करती है। यह शरीर को भीतर से ठंडा रखती है और गर्मी के प्रभाव को भी कम करने में सहायता करती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मियों में शरीर का तापमान है वो भी बढ़ जाता है। धूप में निकलने से बेचैनी, थकान और गर्मी महसूस होती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों छाछ हमारे शरीर को अंदर से ठंडक देती है। छाछ पीने से शरीर में ताजगी आती है और गर्मी का असर भी कम हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में लोग दोपहर के भोजन के साथ छाछ जरूर लेते हैं ताकि श्रोता साथियों वे लू और गर्मी से बचाव कर सकें। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होने लगती है। जैसा कि आपने बताया था श्रोता साथियों, छाछ में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथियों, रोजाना छाछ पीने से हमारा शरीर है वो डिहाइड्रेट के खतरे से दूर रहता है और हमारे शरीर को हाइड्रेट बना के रखता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें तो छाछ का सबसे बड़ा गुण ये भी है कि वो शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देती है। जब कोई व्यक्ति साथियों धूप से लौटता है या गर्मी से परेशान होता है
0: जी,
1: तब
0: हाँ।
1: एक गिलास ठंडी छाछ तुरंत राहत दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि छाछ जो है वो शरीर के तापमान को संतुलित करती है, यह पेट की गर्मी कम करती है और अंदर से ताजगी भी प्रदान करती है।
0: जी हाँ कशिश,
1: मनीषा गर्मियों में जो लोग रोजाना छाछ पीते हैं उन्हें गर्मी भी कम परेशान करती है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही देख सकते हैं श्रोता साथियों कि कोल्ड ड्रिंक कुछ समय के लिए ठंडक का भ्रम दे सकती है, लेकिन छाछ जो है वो वास्तव में शरीर को संतुलन प्रदान करती है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में छाछ सबसे श्रेष्ठ पेय माना जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से गर्मियों में छाछ पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर बातें चली रही हैं। और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है कि छाछ पीने से स्वास्थ्य पर कौन कौन से फायदे होते हैं
1: जी,
0: अगर पाचन शक्ति को बढ़ाने की बात करें साथियों, तो आजकल अनियमित खानपान और बाहर के तले भुने भोजन के कारण लोगों को पाचन संबंधित कई समस्याएं होती है।
1: बिल्कुल,
0: छाछ पाचन सुधारने में बहुत लाभकारी होती है।
1: जी हाँ।
0: और छाछ में ऐसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं साथियों, जो पेट के लिए फायदेमंद भी होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, और साथ ही भोजन के बाद छाछ पीने से खाना जल्दी पचता है।
1: जी हाँ।
0: गैस कम बनती है, पेट हल्का महसूस होता है, कब्ज से राहत मिलती है साथियों, और एसिडिटी भी कम होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गर्मियों में भारी भोजन के बाद छाछ पीने से शरीर को आराम मिलता है, और जिन लोगों को बार बार पेट खराब होने की समस्या रहती है मनीषा, उनके लिए भी छाछ लाभकारी मानी जाती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि छाछ में मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। साथ ही कशिश, हम कह सकते हैं कि अगर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत हो तो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। छाछ का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। साथ ही साथियों, हम देखते हैं कि गर्मियों में धूप और पसीने के कारण त्वचा खराब होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: कई लोगों को मुहासे और रूखापन होने लगता है। श्रोता साथियों, छाछ शरीर को ठंडा रखती है और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। नियमित श्रोता साथियों, इसके सेवन से हमें ताजगी और हमारे चेहरे पर निखार दिखाई देने लगता है हमें। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं। गर्मियों में ज्यादा काम करने के कारण शरीर उनका जल्दी थक जाता है। छाछ महिलाओं को ताजगी देती है और उनकी कमजोरी को भी दूर करने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: कैल्शियम और विटामिन होने के कारण यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि गर्मियों में थकान जल्दी महसूस होती है।
1: जी हाँ,
0: कई लोग थोड़ी देर काम करने के बाद ही कमजोरी महसूस करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में छाछ जैसे ठंडे पेय पदार्थ श्रोता साथियों तुरंत ऊर्जा देते हैं। यह हल्की होने के बावजूद पोषण से भरपूर होती है।
1: जी,
0: छाछ पीने से साथियों शरीर में ताजगी आती है और आलस्य भी कम आता है। हम देखते हैं कि आज मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। लोग वजन कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में छाछ वजन नियंत्रित रखने में मदद करती है साथियों। छाछ में हम देखते हैं कि वसा की मात्रा कम होती है, और ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराती है। इससे बार बार भूख नहीं लगती, और जो लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक या मीठे पेय की जगह छाछ पीते हैं उनका वजन संतुलित रहने में सहायता मिलती है मनीषा।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आयुर्वेद में छाछ को बहुत लाभकारी माना गया है। इसे पाचन सुधारने वाला और शरीर को संतुलित रखने वाला पेय भी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार श्रोता साथियों, छाछ पेट के विकारों को दूर करने में और शरीर की स्फूर्ति बनाए रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि छाछ केवल एक साधारण पेय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। गर्मियों में इसका सेवन और ठंडक ऊर्जा और पोषण देता है।
0: बिल्कुल,
1: ये पाचन शक्ति को साथियों मजबूत बनाती है, पानी की कमी को दूर करती है, लू से बचाती है, और साथ ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है।
0: जी हाँ, आपने सही कहा।
1: आज जब लोग बाजार के हानिकारक पेयों की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तब हमें अपने पारंपरिक और देसी पेयों के महत्व को समझना चाहिए। छाछ सस्ती, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हर व्यक्ति गर्मियों में नियमित रूप से छाछ का सेवन करे तो कई बीमारियों से बच सकता है। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छाछ को जरूर शामिल करना चाहिए, और दूसरों को भी इसके फायदों के बारे में हमें जागरूक करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि साथियों, छाछ केवल एक साधारण पेय नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन शैली का एक अमूल्य हिस्सा है।
1: जी हाँ,
0: गर्मियों में यह शरीर को ठंडक देने, पाचन सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और पानी की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ कोशिश,
0: हम कह सकते हैं साथियों कि आज जब लोग कृत्रिम पेय और अस्वस्थ खानपान की ओर बढ़ रहे हैं, तब छाछ हमें हमारी परंपरा और प्राकृतिक स्वास्थ्य की याद दिलाती है।
1: जी हाँ,
0: बस जरूरत इस बात की है कि हम आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक आदतों को न भूलें। यदि साथियों हर घर में गर्मियों के दौरान छाछ को भोजन का हिस्सा बनाया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि श्रोता साथियों हर घर में गर्मियों के दौरान छाछ का सेवन किया जाए तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से गर्मियों में छाछ पीने के स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ
0: साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
3: हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है। पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावु है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे। जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावरिया अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
2: राम राम।
0: हुवी भाई बुनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: हुवे भाई बुनो लेने हाजिर थी गया कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बुन आज आपड़े कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है कि आपड़े प्राकृतिक जीवन शैली तक दूर थाता सही रहे आना हूँ कारण है ने समाधान ना उपाय होते ही शके किम की आपने देखो हाँ के कार्य कापू जी जीवन हतु ये प्रकृति ने वैस्मिस आपने रहता हता आपने जई वगत पर बाती सूर्य भगवान उगता तई वगत तक ही आपने दारड़ो जी शुरू था तो हतो इनमें आपने ताजा भोजन ने स्थानीय खावानु खाता हता पैदल हिंडता हता खेतर में बगीचा में जाता ઘણા કની ચીજે કરતા હતા એ તઈ વખત આપણું જે જીવન હતું એ અસલ હતું પણ અવડેના ટાઈમમાં આધુનિક જીવનને કારણે આપણી જે ગતિ હે એણે રફતાર પકડી લીધી હે ને ધીરે ધીરે આપણે પ્રકૃતિ તકી દૂર થતા જઈ રહ્યા છીએ તો ભાઈન બુનુ આના ઘણા કના કારણ થઈ શકે ને એને કારણે આપણે દેખી રહ્યો મનીષા બુન કે આપણું જે શરીર હે મન હે આપણો જે રિશ્તો હે એ ભી ખરાબ થતા જઈ રહી આજે કાર્યક્રમમાં આપણે એ જાણંગા કે પ્રાકૃતિક જીવનશૈલી की दूरी ना हूँ कारण है ने आनु प्रभाव आपड़े जीवन माते हूँ पड़े ने समाधान ना हूँ पाए थे शके
0: होवे अंजलि बोन तो अना विषय माते आपड़े भाई बोनो कती घना अक्काने वाते रिंगा अब हमला गीत ने मोरे करा आपड़ी वाती
1: होवे तो भाई बोनो आप हमर तरह सु आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा।